0: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: আকাশবাণী কলকাতা FM রেনবো প্রচার তরঙ্গের এই মুহূর্তের খবর পড়ছি চঞ্চল ভট্টাচার্য। ভারত আমেরিকা 22তম যৌথ সামরিক মহড়া যুদ্ধ অভ্যাস আজ উত্তরাখণ্ডের চামোলি জেলার আউলিতে শুরু হচ্ছে। আউলি ফরেন ট্রেনিং সেন্টারে ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি দেশের 600 জন জওয়ান এই মহড়ায় অংশ নিচ্ছেন। আউলির পাশাপাশি রাজস্থানের মহাজন ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জেও এই মহড়া অনুষ্ঠিত হবে। এই ধরনের মহড়ায় পর্বতসংকুল অঞ্চলে পদাতিক বাহিনীর অভিযানকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় সরকার CRIF প্রকল্পের আওতায় পশ্চিমবঙ্গে

जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, वेरी गुड मॉर्निंग, आदाब। मैं कौन हूँ? जी हाँ, मैं हूँ आपकी दोस्त सविता। चली आई हूँ स्टूडियो में लेकर के आपका हमारा सबका पसंदीदा कार्यक्रम नॉन स्टॉप गपशप। हमसे वादा था एक सवेरे का, हाय कैसे मुकर गया सूरज। क्या कोई वादा करके आपसे मुकरा है? लेकिन नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मुकरी। मैं जो वादा करके जाती हूँ उसी वादे पे चली आती हूँ, और आज तो बिना वादे के ही चली आई हूँ दोस्तों। जी हाँ, मेरा कुछ था दिल जो कह रहा है।

que din. जी हाँ दोस्तों, आगे पायदान पर हम लेकर आए हैं आपके लिए आज के दिन। आज के दिन के सेगमेंट में क्या खास है, चलिए आपके साथ रूबरू हो जाते हैं। दोस्तों, विश्व भर में 16 सितंबर की तिथि बहुत ही रूप से ऐतिहासिक है। एक्चुअली हम लोग बचपन में जब दादा नानी से किस्से कहानियाँ सुनते हैं ना, तो बड़े ही हतप्रत से हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। स्कूल में कदम रखते हैं तो ऐतिहासिक कहानियों का आकर्षण हमें खींचने लगता है, और जब सुने हुए ये किस्से आँखों से देखने, उंगलियों से छूने का एहसास पाते हैं तो दिल और दिमाग रोमांच से भर जाता है। बिल्कुल दोस्तों, जब आप कोई सी ऐतिहासिक जगह पर जाते हैं और जब उनको देखते हैं तो सचमुच में रोमांच हमारे दिल में होने लगता है, हमारे अंदर एक भीतर एक अजीब सी एहसास जगने लगता है कि ये जो किस्से कहानियाँ हमने अपनी दादी दादा नानी से या दादी नानी से सुने थे, वो किस्से क्या इन्हीं सब जगह पर हुए थे। बिल्कुल दोस्तों, मैं तो कुछ इसी तरह से रोमांचित हो जाती हूँ, और कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनको सुनने के बाद, समझने के बाद हमें लगता है कि हमें हर वक्त उन्हें जानना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि हम अपने आज को अच्छा बना सकें और कल को बेहतर। तो आइए ऐसे ही इतिहास को साझा करते हैं आपके साथ।

1620 में इंग्लैंड के प्लायमाउथ में मे फ्लावर जहाज के प्रस्थान की वर्षगांठ है, जो तीर्थ यात्रियों को नई दुनिया में ले गया था। दोस्तों, यह घटना अमेरिकी इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, जो शुरुआती बसने वालों की स्वतंत्रता और नई शुरुआत की खोज का प्रतीक है। 1810 में 16 सितंबर को मैक्सिकन इतिहास में फादर मुगेल हिडाल्गो द्वारा ग्रीटो डी डोलोरेस जारी करने के दिन के रूप में दर्ज किया जाता है, जो स्पेनिश शासन के अंत का आह्वान था और मैक्सिकन स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत का प्रतीक था। इसके अतिरिक्त 1893 में इसी तिथि पर चेरोकी स्ट्रिप भूमि संघर्ष भी हुआ था, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़े और सबसे अराजक भूमि संघर्षों में से एक था। तो ये थी कुछ ऐतिहासिक घटनाएं जो हमने की आपके साथ साझा। आज के दिन शहीद बलवंत सिंह का भी जन्म हुआ था। वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे और 10 वर्षों तक ब्रिटिश सेना में सेवा की। उनका जन्म 16 सितंबर 1882 को जालंधर जिले के खुर्दपुर गांव में हुआ था। इसके अलावा श्याम लाल गुप्ता प्रसाद का भी जन्म हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के वो एक योद्धा, पत्रकार, समाजसेवी और शिक्षक थे। वे ध्वज गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता थे, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोस्तों, इसके अलावा मधुरे शनमुख व दिबु सुबु लक्ष्मी का भी जन्मदिन है, जिन्हें कर्नाटक संगीत का पर्याय माना जाता है। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय गायिका थी। उन्होंने उनके द्वारा गाए जो गीत थे, विशेषकर भजन, आज भी लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें संगीत की रानी कहा था, जबकि गायिका लता मंगेशकर उन्हें तपस्विनी का नाम दिया था। तो दोस्तों, ये थे हमारे महान व्यक्ति जिन्होंने आज के दिन जन्म लिया। तो चलते हैं, एक और गीत सुनते हैं और उसके बाद क्या लेकर आए हैं बताएंगे।

0: आज के दिन।
1: जी हाँ दोस्तों, आज के दिन भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध गीतकार का भी जन्म हुआ था। विज्ञापन जगत में उन्हें न केवल विज्ञापन गुरु के रूप में जाना जाता है, बल्कि वे अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन कंपनी मैकेन एरिक्सन के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। वे एशिया महाद्वीप में इस कंपनी के क्रिएटिव डायरेक्टर की भूमिका निभा रहे हैं और पेशेवर गतिविधियों के साथ एक संवेदनशील लेखक भी हैं। उनके गीतों और गज़लों के लिए उन्हें शीर्ष गीतकारों में जाना जाता है। उन्हें सुपरहिट फिल्म तारे ज़मीन के गीत माँ के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। बात कर रही हूँ जी हाँ, प्रसून जोशी की। जी आज 16 सितंबर 1968 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जन्म हुआ प्रसून जोशी का। तो आइए प्रसून जोशी द्वारा लिखित उन्हीं का ये गीत सुनवाते हैं फिल्म गजनी से, बेनी दयाल और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में।

0: जी हाँ दोस्तों, नॉन स्टॉप गपशप में एक बार फिर से स्वागत है। अभिनंदन है और आपकी दोस्त सविता आपके साथ जुड़ी हुई है और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे दोस्त। देखिए वो क्या कहते हैं। हेलो,
1: मैं अरूप बोल रहा हूँ।
0: अरूप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। बताइए सबसे पहले आप हैं कैसे?
1: अच्छा है
0: और अच्छे ही बने रहिए, बस अच्छे ही रहिए, ऐसी ही हमारी दुआ है।
1: हाँ, मेरा तो 64 हो गया, ओल्ड एज हो गया।
0: अच्छा, ओल्ड एज तो नहीं, आप मन से यदि
1: मन से हम जवान लग रहे हैं।
0: जवान है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ऐसी ही सोच होनी चाहिए तो हम कभी भी बूढ़े नहीं होंगे।
1: पुराना गाना दीजिए ना। क्यों,
0: पुराना गाना दूं? अच्छा चलिए, आप 64 के हैं तो आप हमारे सीनियर सिटीजन है।
1: और परिवार फिल्म का गाना है बहुत बढ़िया वाला, वो गाना खूब कम बजता है।
0: अच्छा चलिए,
1: आपने सच है ये हो गया ये अपने।
0: चलिए मैं आपको सुनवाऊंगी।
1: लता मंगेशकर का गाना है।
0: बिल्कुल, मैं आपकी जो चॉइस है उसको सुनवाऊंगी, क्योंकि आप हमारे सीनियर सिटीजन है तो आपकी आज्ञा हमारे सिर पर है। और बताइए सब ठीक ठाक?
1: हाँ सब ठीक ठाक।
0: चलिए शुक्रिया। तो हमारे साथ अरूप जी जुड़े और उन्होंने तो बस अपनी एक इच्छा हमें बता दी है, तो हम कोशिश करेंगे उनकी इच्छा पूरी करने की। लेकिन दोस्तों, आज आप हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और जुड़ करके क्या बात करने वाले हैं तो मैं बताऊं कि आज हम बात करना चाहेंगे आपके साथ कि अभी पूजा आ रही है, आपका फेवरेट अभी समय चल रहा है, एकदम बहुत सारी धुआंधार शॉपिंग जो करनी है आपको, लेकिन अभी जमाना आ गया है ऑनलाइन का। बिल्कुल, ऑनलाइन भी शॉपिंग चल रही है और साथ में शॉपिंग ऑफलाइन भी चल रही है। तो वो क्या वजह है कि ऑनलाइन शॉपिंग के बावजूद भी ऑफलाइन शॉपिंग खूब चल रही है? लोग दुकानों पर जाते हैं और दुकानों पर जाकर के शॉपिंग करते हैं, बाज़ारों में कहीं कोई कमी नहीं है, कहीं कोई भीड़भाड़ की कमी नहीं है। अभी तो जैसे जैसे दुर्गा पूजा का समय आएगा वैसे वैसे भीड़ और भी बढ़ती चली जाएगी।

0: पता नहीं क्या क्या चीज़ें लेनी है पूजा में, घूमने के लिए, पूजा में पहनने के लिए। तो मुझे बस इतना बताइए कि पूजा में, पूजा से मतलब नहीं है खाली, ऐसे भी हम ऑफलाइन शॉपिंग क्यों कर रहे हैं इतनी, जब हम ऑनलाइन शॉपिंग की भी हमको सुविधा है। तो आपके विचार में वो क्यों ज़रूरी है और उसका कारण क्या है, ये आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। फिलहाल तो मैं आपको कोलकाता कल्चर की ओर लेकर चलती हूँ।
1: कोलकाता कल्चर।
0: जी हाँ दोस्तों, कोलकाता कल्चर मैं आपके लिए हम लेकर आए हैं कि कोलकाता में क्या क्या होने वाला है, कौन कौन सी वो गतिविधियां हैं जो होने वाली हैं। तो 16 सितंबर को कोलकाता में कई महत्वपूर्ण सांस्कृतिक, साहित्यिक और कला से जुड़ी गतिविधियां होने वाली हैं। तो आपको बता दें झटपट से कि कोलकाता के सुप्रसिद्ध एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में भव्य कला प्रदर्शनी का आयोजन चल रहा है, जो 13 से 19 सितंबर तक चलने वाले इस मेले में 16 सितंबर को आप 12 बजे से रात 8 बजे तक विभिन्न आर्ट गैलरीज में जाकर देश विदेश कलाकारों की बेहतरीन कलाकृतियाँ खोज सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा इंडिया ग्लोबल ग्रैंड ट्रेड फेयर प्री पूजा एग्जीबिशन भी है। कोलकाता का सबसे बड़ा प्री दुर्गा पूजा सांस्कृतिक और व्यापार मेला आयोजित हो रहा है। यह मेला दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहेगा, जहां पारंपरिक बंगाली परिधान, हस्तशिल्प और सांस्कृतिक स्टॉल्स का अनुभव किया जा सकता है। इसके अलावा संगीत, नृत्य और रंगमंच थिएटर का भी आयोजन हो रहा है। रविंद्र सदन और इसके आसपास के सभागारों में इस सप्ताह स्थानीय समुदायों और नाट्य समूहों द्वारा पौराणिक कथाओं और समसामयिक विषयों पर आधारित नाटकों और संगीत कार्यक्रमों का मंचन किया जा रहा है। शाम के समय यहाँ कई लाइव परफॉर्मेंस देखी जा सकती हैं। शहर के चुनिंदा इंडोर ऑडिटोरियम में भी अनुरेखा घोष डांस कंपनी और अन्य समकालीन संगीतकारों के सहयोग से शास्त्रीय नृत्य, कथक और इलेक्ट्रॉनिक साइकेडेलिक म्यूजिक फ्यूजन से जुड़े सांस्कृतिक शो इस सप्ताह आयोजित हो रहे हैं। तो दोस्तों ढेर सारे प्रोग्राम होने वाले हैं, आज के दिन आप एंजॉय कर सकते हैं कोलकाता कल्चर में।
1: कोलकाता कल्चर।
0: मेरे साथ लोग जुड़ रहे हैं तो मैं उन्हें डायरेक्ट ऑन एयर लेती हूँ, देखती हूँ वो क्या कहना चाहते हैं। हेलो,
2: नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार, आप कौन? शोभिक।
2: हाँ दीदी, एकदम
0: राइट। देखो मैं पहचान गई।
2: असल एकदम हम लोग का पहचान है ना, हम लोग एक दस बन गए, ऐसे वॉइस से आप लोग पहचान जाते हैं।
0: बिल्कुल एकदम, मैं अपना नाम ना बताऊं तो भी आप पहचान लेते हैं।
2: एकदम दीदी, आज जो टॉपिक दिया है ना
0: जी,
2: ऑनलाइन और ऑफलाइन में,
0: हाँ
2: वो देखिए दीदी, हम लोग ऑफलाइन में पसंद करता है। देखिए मैं जी न्यू जनरेशन के हूँ, फिर भी मैं बोलता हूँ जब ऑफलाइन मेरी पसंद है, क्योंकि देखिए हम लोग जब भी कोई शॉपिंग मॉल में हम लोग जाते हैं, वो जो ट्रायल रूम है हम लोग ट्रायल कर सकते हैं वो जामा पहन लेकर। ऑनलाइन में हम लोग वो फुर्सत नहीं मिलेगा। सेकेंड जो ऑप्शन है, हम लोग जो दौड़दम, आप लोग जो दौड़दम होता है ना धर्मतला में, दौड़दम ऑनलाइन में नहीं मिलेगा। ऐसी सिर्फ तो होता है, किंतु ऑनलाइन में ऐसी तरह से हम लोग को मिलेगा कैशबैक भी मिलता है। आप लोग जो भी कीमत है खरीद कीमत है तो एक अच्छा सा कैशबैक मिलता है, ऑफर भी बहुत बहुत अच्छा चलता है। किंतु ऑफलाइन में मुझको जो लग रहा है, हम लोग शॉपिंग में जाता है, कोई चटक दर, कोई खाना पीना भी मिलता है कोई अच्छा से, जो न्यू मार्केट गोरियाड में बोलिए, शॉपिंग किया, उसके बाद हम लोग वो जो बोलता है हम लोग खाना पीना बोलिए, जो जो भी हो, जूता किने, वो जामा पहन जो भी किने, हम लोग हाथ लेकर जो हम लोग देख सकते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि हम लोग टाइल में टाइल करते तो है ही, उसके साथ हम लोग का कोई ना कोई डिस्काउंट जो मिलता है वो तो अच्छा सा मिलता ही है। जो दुकान का जो मालिक जो होता है वो चैन जो चेना सुना जो हम लोग जो भी तो वो अच्छा सा कोई ना कोई और भी डिस्काउंट दे देता है। हम लोग देखते हैं ऑफलाइन में ये सुविधा बहुत है। लास्ट जो बात बताऊंगा, आप लोग जो एक्सचेंज भी कर सकते हैं, घर में ले आ तो किसी के लिए गिफ्ट देना है तो पसंद नहीं है, दूसरा दिन में जाए तो एक्सचेंज

0: एकदम तड़ातड़ी हो जाते हैं, किंतु ऑनलाइन में वो नहीं होता है, तीन चार दिन चल जाता है, वो बहुत बहुत प्रॉब्लम होता है। मुझको लगा सबसे बेस्ट जो होता है ना वो है ऑफलाइन
1: दीदी। जी तो शौविक जी आपने एकदम सही बताया कि अरे ये 100 रुपये का नहीं नहीं, इसका दाम तुम 70 रुपया दो, नहीं नहीं हाँ। अच्छा 75 रुपया दो, अच्छा तो ठीक है हम 90 रुपया में देता है। तो ये जो एक मजा है ना खींचातानी का, वो मजा तो ऑनलाइन में नहीं आता। सही सही आपने कहा। और डिस्काउंट का बात है कैशबैक का, तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि ऑनलाइन में जो कैशबैक मिलता है वो एक तरह से डिस्काउंट हो गया है ना।
0: एकदम दीदी ऐसे होता है।
1: ठीक है शौविक जी, तो आप ऑफलाइन शॉपिंग करते रहिए और हम यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं। ठीक है,
0: थैंक यू।
1: तो शौविक जी ने तो अपने मन की बात कह दी। आप भी यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं कि ऑफलाइन या ऑनलाइन कौन सी शॉपिंग आपको पसंद है। फिलहाल तो मैं गाना सुनवाऊंगी आपको।

0: दोस्तों, बड़ा ही प्यारे गीत की फरमाइश की हमारे अरूप जी ने, और अरूप जी की इस फरमाइश के सहारे ये गीत मैंने भी सुन लिया बहुत दिनों बाद। बड़ा ही प्यारा गीत था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, और नॉनस्टॉप गपशप में हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक हमारे दोस्त, तो देखें वो क्या कहते हैं। हेलो,
1: नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार, आपका नाम बताइए पहले।
1: मैं सुब्रत माल बात कर रहा हूँ, गंगाधरपुर धर्मतला हावड़ा से।
0: जी सुब्रत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और आप क्या पहली बार आए हैं?
1: मैं पहली बार तो नहीं आया, मैंने कुछ साल पहले आए थे।
0: अच्छा,
1: आज तो बहुत दिनों बाद में आपके साथ बात हो रही है।
0: जी जी, बहुत दिनों बाद बात हो रही है, तभी मैंने मुझे लगा कि आप पहली बार आए हैं। तो बहुत दिनों बाद आए हैं, तो आपका और भी ज्यादा ढेर सारा स्वागत है कार्यक्रम में।
1: थैंक यू दीदी।
0: बताइए कैसे हैं?
1: आज जो टॉपिक लाया है, ऑफलाइन और ऑनलाइन।
0: जी,
1: मैं तो ऑफलाइन को प्रेफर करता हूँ।
0: अच्छा,
1: ऑनलाइन में देखिए फोटो देखकर चीज खरीदता है, घर में दे जाता है, देखे ठीक है, लेकिन अगर ऑफलाइन जाएंगे तो हर चीज का महसूस होता है। हाथ जो कपड़े होता है अलग अलग तरीके से, उसमें हाथ रखकर को आपको जो महसूस होगा वो ऑफलाइन में है, ऑनलाइन में नहीं मिलेगा। हर चीज का जो देखिए, हम तो जाते हैं सब चीज देखते हैं, आपने सामने देखते हैं, बात करते हैं, कितने लोगों से हमको परिचय हो भी होता है, और चीज खरीदने के लिए दो चार दोस्त भी मिल जाता है आस पास में, और जो चीज जो हम खुद देख कर लेते हैं क्या ले रहा हूँ उसको परख कर लेना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: इस ऑफलाइन में ऐसा होता है, लेकिन ऑनलाइन में आपको नहीं मिलेगा। वो तो आप घर बैठे रहे ऑर्डर करे दिया जाता है, लेकिन आपको जो ऑफलाइन में जब मिलता है, जब मार्केट में जाते हैं हम लोग, ऐसे घूमने को मौका आते है, मैंने मौका जो है घूम फिर लेकर खरीद के लिए अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल, वो जो पूजा की जो एक शॉपिंग करने का जो मजा है वो अलग ही है ना।
1: अलग ही है। देखिए बहुत सारे लोग के साथ भी मिलते है, चीज जब खरीदते है तो मैं देख कर लेते हैं सब ठीक ठाक है कि नहीं, इसलिए मैं ऑफलाइन को मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ। ऑनलाइन में हमको नहीं अच्छा लगता, मैं खरीदता भी नहीं हूँ। हम तो मार्केट में जाते हैं, खुद अपने सामने सामान देखते हैं, फिर खरीद लेते हैं।
0: चलिए तो आप
1: हेलो दीदी।
0: हाँ बोलिए।
1: जाते थे, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई कुमार सानू का जी का गाना हो तो सुनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा।
0: कुमार सानू का?
1: हाँ
0: जी, मैं कोशिश करूंगी कि कुमार सानू का कोई गीत सुनाऊं। जी तो दोस्तों, हमारे साथ सुब्रत जी जुड़े, और उनको तो ऑफलाइन ही पसंद है, हालांकि ऑनलाइन में हमारे साथ ये एक सुविधा रहती है कि आप थकते नहीं हैं, घर बैठे ही आप घर में चीज़ देख लेते हैं और उसके साथ फिर आप ऑर्डर कर देते हैं। लेकिन यहाँ जो उन्होंने बताया कि आप अपने हाथ से देख करके आप चीज़ को फील करके उस जो भी वस्तु आप खरीदने गए हैं उसको आप ले सकते हैं, और साथ में इंटरेक्शन होता है, बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है। साथ में आप जब कहीं शॉपिंग के लिए जाते हैं तो आप अपने परिवार के साथ या अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग करने जाते हैं तो उनके साथ भी एक बड़ा आनंद आता है। तो ये सब तो हकीकत है, सच है, और जो उन्होंने बात कही की सुब्रत जी ने वो सच कहा। तो चलिए हम आपको सुनवाते हैं एक गीत, लेकिन गीत सुनवाने से पहले मैं आपके लिए एक खास सूचना लेकर आई हूँ, वो सूचना मैं जरूर पढ़ूंगी। दोस्तों, 138वीं डाक अदालत एवं पेंशन अदालत मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल पश्चिम बंगाल सर्किल की अध्यक्षता में दिनांक 28/10/2026 को अपराह्न 12:30 पर मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्किल योगायोग भवन P36CR Avenue कोलकाता 70001-2 में गूगल मीट वीडियो सम्मेलन के माध्यम से 138वीं डाक अदालत एवं पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी। इस अदालत में पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के डाकघरों से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन भोगियों की डाक सेवाओं और पेंशन दावे से संबंधित शिकायतों का निपटान किया जाएगा। शिकायत पत्र में संदर्भ संख्या

इन डाक प्राधिकारियों से पूर्व में प्राप्त पत्रों की तारीख एवं शिकायतकर्ता के मोबाइल नंबर सहित पूर्ण ब्यौरों का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। शिकायत श्री एस सी दास, सहायक निदेशक डाक सेवा ग्राहक संतुष्टि, मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय, पश्चिम बंगाल सर्किल, P36 CR एवेन्यू, कोलकाता 70001 के नाम से भेजी जाए और यह डाक या ईमेल ID cpmg_wb@indiapost.gov.in adpgcowb@gmail.com या pgwwb@indiapost.gov.in के माध्यम से दिनांक 30/9/2026 तक या उससे पूर्व पहुंच जानी चाहिए। शिकायतकर्ता से अनुरोध है कि वे उपरोक्त निर्धारित तारीख एवं समय पर गूगल मीट वीडियो सम्मेलन के जरिए डाक अदालत एवं पेंशन अदालत में उपस्थित हों। किसी भी परिवार के स्पष्टीकरण के लिए सहायक निदेशक डाक सेवा ग्राहक संतुष्टि से दूरभाष संख्या 0332212050 या फिर 0332121612 या 0033221050 पर संपर्क किया जा सकता है। डाक अदालत या पेंशन अदालत के आवेदनों या ईमेल पर डाक अदालत या पेंशन अदालत शब्द लिखा होना चाहिए। उपयुक्त डाक एवं पेंशन अदालत में उत्तराधिकार आदि से संबंधित विधिक मामलों एवं नीतिगत मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों 138वीं डाक अदालत एवं पेंशन अदालत की सूचना समाप्त हुई।

0: दोस्तों धीरे धीरे हमारी मंजिल अपने मुकाम पर आ पहुंची है और हमारे आखिरी कॉलर को हम ले लेते हैं कि वो देखें क्या कहना चाहते हैं। हेलो हेलो,
1: जहाँ जाता हूँ होती है हलचल, प्यार से लोग कहते हैं मुझे श्याम कुमार चंचल
0: जी, और बिना चंचल के हमारे दिल में हो जाती है हलचल।
1: मेरा तो काम ही ऐसा है, मैं चंचलता के साथ हर काम करता हूँ और सफल भी होता हूँ।
0: बिल्कुल, और हलचल मचा देते हैं जहाँ जाते हैं, है ना?
1: बहुत धन्यवाद
0: जी, बताइए कैसे है?
1: हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप कैसे हैं बताइए?
0: मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, और आप सभी के साथ हमारी बातचीत होती है तो अच्छा लगता है। और जो आज हमारा टॉपिक है, विषय है, उस पर क्या कहना चाहते हैं?
1: मैं इस विषय पर बोलना चाहता हूँ कि ऑनलाइन और ऑफलाइन जो शॉपिंग है, मैं ऑफलाइन में ही ज्यादा पसंद करता हूँ। इसमें कई तरह के फायदे भी हैं। फायदे ये हैं कि खाना पीना अच्छा होता है, सबको लेके जाते हैं, मन पसंद सामान खरीदते हैं, और कपड़े को अच्छी तरह से देखते हैं, दिन दिन के उजाले में भी देख पाते हैं, और सबको लेकर आनंद यही आता है कि हम सब खरीद रहे हैं सामान को, और खाना पीना तो होता ही है, सबको लेके जाएंगे तो खाना पीना भी होता है, तो यही अच्छा लगता है। ऑफलाइन से ही खरीदना मैं पसंद करना चाहता हूँ
0: जी। चंचल जी, आपने जो बताया वो सही है, और लेकिन एक इसमें एक जो खास बात ये है कि पैसा थोड़ा ज्यादा, पॉकेट ज्यादा खाली नहीं हो जाती?
1: देखिए, पैकेट तो खाली होती ही है, लेकिन आनंद भी तो आता है ना,
0: आनंद भी ज्यादा आता है ना।
1: और देखिए, हम जब शॉपिंग करने निकलेंगे तो सभी तरह के जो हमारे ऑटो वाले भाई हैं, रिक्शा वाले भाई हैं, टैक्सी वाले भाई हैं, सभी को हम इनको पैसा हमारी तरफ से मिलता है, और वो गिफ्ट भी हमसे मांगते हैं, पूजा की बोनस वगैरह मांगते हैं, तो उसको भी हम जो हमसे बनता है हम देते हैं उनको।
0: बिल्कुल सही बात है,
1: तो आपको खुश रहना है
0: जी, तो हम खुद खुश नहीं होते बल्कि दूसरे लोगों को भी खुश करते हैं, है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: बिल्कुल, और ये अच्छी भावना है। और चलिए, आप पूजा की शॉपिंग, अभी तो बस लगातार शॉपिंग का समय आ रहा है, लगातार ऐसा मौसम आ रहा है शॉपिंग का कि पूजा के बाद फिर दीपावली की पूजा, फिर उसके बाद शादी ब्याहों की पूजा, ये सब लगातार चलता ही रहेगा, है ना?
1: जी जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने
0: जी।
1: और मैं एक गीत की फरमाइश आपसे करता हूँ, अगर सुनवाएंगे कि ये गाना बहुत फड़फड़ाता हुआ है, बहुत अच्छा लगता है।

0: सुनने में और सबको पसंद भी आएगा
1: जी।
0: फिल्म गिरफ्तार,
1: धूप में ना निकला करो,
0: थोड़ी कुड़ी हो,
1: अच्छा,
0: कुदरत की जादूगरी हो के आके मार ले झप्पी, मोहम्मद अजीज की आवाज में
1: जी। तो मैं यदि आज नहीं सुनवा पाई तो दूसरे दिन जरूर सुनवाऊंगी, ठीक है?
0: कोई बात नहीं है, हम तो इंतजार करते रहते हैं और आप जो भी गीत सुनाएंगी अच्छा ही होगा। चलिए जल्दी सुनाइए फिर हमको ये गाना
1: जी।

जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल वक्त हो चला है आपसे अब इजाज़त लेने का। और कल, जी हाँ कल छाया लोक में मैं रहूँगी आपके साथ 17 तारीख को। तो बस जा कहीं नहीं रही, एक दिन की बस आपके साथ थोड़ी सी जुदाई है। कल हम फिर से मिलने वाले हैं और 11:10 पर कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद में। आप हमसे मिलना जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। आज हम बहुत ही अच्छे शायर, जो एक गीतकार के रूप में और शायर के रूप में जाने जाते हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं और उनके ही गीतों को सुनवाने वाले हैं। और फिलहाल हमसे फरमाइश की थी चंचल जी ने गिरफ्तार फिल्म के गीत की, तो उस गीत को सुनवाते सुनवाते मैं आपकी दोस्त आपसे लेती हूँ विदा। मुलाकात होने वाली है 11:10 पर थोड़ी ही देर बाद। लो आ गई उनकी याद में। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। भला ये कहना मैं कैसे भूल सकती हूँ, जो कि खुद ही सब समय हंसती रहती है, मुस्कुराती रहती है।

गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का 107 FM रेनबो पर। टीम का तड़का 107 FM रेनबो पर।

3:08 है, स्टूडियो की घड़ी का समय 107 FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है तीन का तड़का, जिसे आप सुनते हैं हर रोज इसी समय, जी हाँ इसी जगह पर, यानी कि तीन का तड़का कार्यक्रम को सुनने के लिए आपने ट्यून किया है 107 FM रेनबो के अलावा न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी हमारे ये प्रसारण इस वक्त आप सुन पा रहे हैं। और आज के इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं आपके रेडियो दोस्त शर्मिशा के संग, जी हाँ इस कार्यक्रम

0: का साथ है आज बहुत ही कम, यानी कि 3:30 तक इस कार्यक्रम के साथ मैं हूँ आप सभी श्रोताओं के साथ। और चलिए कार्यक्रम में बातें होंगी और भी नई पुरानी फिल्मों को लेकर, लेकिन शुरुआत में एक बहुत ही प्यारे से गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई और अगले गाने की ओर और अगले फिल्म की ओर हम आगे बढ़े इस कार्यक्रम में। उससे पहले परियोजना प्रस्तुति आप सभी सुनने वालों के लिए।
1: परियोजना प्रस्तुति, परियोजना प्रस्तुति, सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति, परियोजना प्रस्तुति।
0: 107 FM रेनबो परियोजना प्रस्तुति में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। लेकर आए हैं एक नई योजना जिसे साझा करेंगे आप सभी श्रोताओं के साथ। आज की योजना है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन स्कीम, अर्थात राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को लेकर आज के इस कार्यक्रम में परियोजना प्रस्तुति के अंतर्गत बात करेंगे। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन अर्थात राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसे 4 जनवरी 2022 को मंजूरी दी गई थी। इसका मुख्य लक्ष्य 2030 तक भारत को हरित हाइड्रोजन का उत्पादन और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना है। ये योजना सौर या फिर पवन ऊर्जा का उपयोग करके पानी से स्वच्छ हाइड्रोजन बनाकर कार्बन उत्सर्जन कम करने और जीवाश्म ईंधन आयात पर निर्भरता घटाने पर केंद्रित है। उत्पादन लक्ष्य की अगर बात करें तो 2030 तक हर साल कम से कम 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। नवीकरणीय क्षमता की अगर बात करें तो इसके उत्पादन के लिए 125 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का विस्तार किया जाना है। निवेश और नौकरियों की अगर बात करें तो 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश और 6 लाख से अधिक नौकरियों के सृजन की उम्मीद है इस योजना से। इस मिशन की नोडल एजेंसी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE है। ये भारत की 2070 तक नेट जीरो नेट कार्बन उत्सर्जन शून्य प्राप्त करने की प्रतिबद्धता में एक बड़ा कदम है।
1: 107 FM रेनबो प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति, परियोजना प्रस्तुति, सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति, परियोजना प्रस्तुति।
0: 107 FM रेनबो परियोजना प्रस्तुति आज यहीं तक बात कर रहे थे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन स्कीम को लेकर। कल फिर से इसी जगह इसी चैनल पर दोबारा बात होगी आपसे। लेकर आएंगे एक नई योजना परियोजना प्रस्तुति के अंतर्गत। रुख करते हैं फिल्मी गीत की ओर। कार्यक्रम चल रहा है 3 का तड़का।
2: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं 3 का तड़का, 3 का तड़का, 3 का तड़का। 107 FM रेनबो पर 3 का तड़का, 3 का तड़का, 3 का तड़का। 107 FM रेनबो पर, रेनबो।

3:17 है। स्टूडियो की घड़ी का समय संगे आप शर्मिशा कर सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिसे आप सुनते हैं हर रोज इसी जगह इसी समय पर। कार्यक्रम का नाम है 3 का तड़का और खट्टी मीठी। जी हाँ, खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे गायिका श्रेया घोषाल की आवाज़ में। और इस गीत को सुनते सुनते चलिए कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाए और फिलहाल बात करूँ किंग खान की आने वाले नई फिल्म को लेकर। जी हाँ, टाइटल है किंग। जी हाँ, फिल्म का नाम है किंग, जिसमें शाहरुख खान और उनके साथ और भी बहुत से जाने माने अभिनेता को अभिनय करते हुए हम देखने वाले हैं इस फिल्म में, जिसका नाम है किंग और शाहरुख खान की आने वाली ये फिल्म है। तो चलिए, ये फिल्म टक्कर दे रही है एक और फिल्म को। आखिर वो फिल्म कौन सी है जिसके साथ किंग की टक्कर होने वाली है? जी हाँ, किंग के साथ टक्कर, क्या ऐसा संभव हो सकता है? जी हाँ, ऐसा संभव है कि किंग के साथ टक्कर देने के लिए एक और फिल्म आमने सामने होने वाली है। शाहरुख खान की फिल्म किंग की टक्कर हॉलीवुड फिल्म एवेंजर्स के साथ होने वाली है। और ये जो फिल्म है किंग, इसे तय तारीख पर ही रिलीज किया जाएगा, ऐसी खबर आ रही है। शाहरुख खान की आगामी एक्शन थ्रिलर फिल्म किंग 24 दिसंबर, जी हाँ, इसी साल

यानी कि 2026 को 24 दिसंबर को रिलीज होने के बारे में बताया जा रहा है। और अगर डायरेक्शन की बात करें तो इस फिल्म का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद द्वारा किया जा रहा है। स्टार कास्ट की चलिए बात कर लेते हैं। फिल्म में शाहरुख खान तो है ही, जी हाँ, शाहरुख खान के बेहतरीन अभिनय को हम देखने वाले हैं, लेकिन साथ ही साथ उनके साथ और कौन कौन से अभिनेता अभिनेत्रियों को भी हम देखेंगे इसके बारे में चलिए आपको बताऊं। शाहरुख खान के साथ सुहाना खान, अभिषेक बच्चन, दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर के साथ जैकी श्रॉफ, रानी मुखर्जी, जयदीप अहलावत के अलावा अरशद वारसी और राघव जुयाल जैसे अभिनेताओं को हम देख सकते हैं इस एक फिल्म में। और इतनी सारी बातें जब कर ली तो चलिए इस फिल्म की कहानी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताती जरूर। तो रिपोर्ट्स के अनुसार ये उड़ती सी खबर आ रही है कि फिल्म में शाहरुख खान एक शक्तिशाली डॉन की भूमिका में नजर आने वाले हैं, जो अपनी बेटी सुहाना खान को अपराध की खतरनाक दुनिया से निपटना और जीना सिखा रहे हैं। जी हाँ, एक डॉन पिता अपनी बेटी को किस तरीके से दुनिया की झंझटों से लड़ते हुए जीना है इसे सिखा रहे हैं, इसे आप देख सकते हैं। और इसके अलावा फिल्म में अभिषेक बच्चन मुख्य खलनायक या फिर खतरे के रूप में नजर आने वाले हैं इस फिल्म में। अब कहानी के बारे में जब बता दिया तो चलिए जल्दी से बजट के बारे में भी बताती चलूँ। फिल्म का कुल बजट लगभग 400 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, और 400 करोड़ रुपए जिस फिल्म में लग रहे हों बनाने के लिए, तो रिलीज़ होने के बाद आखिर ये पता चलेगा कि इतने सारे रुपए जिस फिल्म में लगाए जा रहे हैं तो आखिर वसूल कितना होने वाला है, यानी कि दर्शकों को आखिर ये फिल्म कितनी पसंद आएगी नहीं आएगी, इसके बारे में तो बस इंतज़ार ही हम कर सकते हैं। और जब ये फिल्म रिलीज़ होगी उसके बाद ही पता चलेगा इस फिल्म का रिएक्शन आखिर लोगों को कितना भाया, कितना पसंद आया, कितना नहीं पसंद आया। तो चलिए फिलहाल रुक करते हैं एक प्यारे से फिल्मी गीत की ओर, और उसके बाद बात करूंगी एक और फिल्म को लेकर।

चलिए जल्दी से इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और चलते चलते हम सब की चहेती अभिनेत्री रश्मिका मंदाना से जुड़ी एक अपडेट आप सभी श्रोताओं तक देती चलूं। और रश्मिका मंदाना नज़र आने वाली है अगली नई नई फिल्म में, और वो फिल्म कौन सी है चलिए इसके बारे में जल्दी से बताऊं आपको। रश्मिका मंदाना के हाथ लग रही है एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। जी हाँ, पर्दे पर संगीत की रानी का रोल निभाते हुए नजर आएंगी हमारी ये अभिनेत्री, यानी कि रश्मिका मंदाना। रश्मिका मंदाना महान गायिका MS सुब्बालक्ष्मी की बायोपिक में मुख्य भूमिका निभाते हुए नजर आने वाली हैं। अपने करियर का सबसे चैलेंजिंग रोल करने के लिए रश्मिका बिल्कुल तैयार हैं और एक्ट्रेस से एक बायोपिक में महान गायिका MS सुब्बालक्ष्मी का किरदार निभा रही हैं। और सुब्बालक्ष्मी भारत की सबसे सम्मानित संगीतकारों में से एक हैं जिन्होंने कर्नाटक संगीत में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान हासिल की थी। वे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पाने वाली पहली संगीतकार रही हैं। और रश्मिका मंदाना अपनी आने वाली नई फिल्म बायोपिक में नजर आने वाली हैं और देखते हैं कि जानी मानी संगीतकार का रोल वे इस फिल्म में किस तरीके से निभाती हैं और उनका ये जो किरदार है लोगों को, दर्शकों को आखिर कितना भाता है। तो इसी के साथ आज का ये जो कार्यक्रम है करना होगा यहीं पर समाप्त, लेकिन ठीक 3:30 से NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम रहेगा आप सभी श्रोताओं के लिए। रुख करते हैं एक फिल्मी गीत की ओर।

0: हो जाए सब दंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत करती हूँ आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। मैं हूँ आपकी चिर परिचित मित्र विमलेश। नमस्कार श्रोता मित्रों, तो करते हैं एक सुंदर विचार से शुरुआत, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी कलावती सोनी जी ने। लिखते हैं, हमें जीवन मिला है एक दूसरों में खुशियाँ बांटने के लिए, इसलिए हमें हमेशा दूसरों के जीवन में खुशियाँ और सौहार्द बांटना चाहिए। धन्यवाद आपका संदेश के लिए। और अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम। चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू, रविंद्र रौनक सेन। और इसके साथ साथ ही संदेश मिला है छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू जी का। वो लिखते हैं, उमंग कार्यक्रम के द्वारा सुंदर व उपयोगी प्रस्तुति के लिए आप सभी को हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद। इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी जी का, ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे, ग्राम नजीरपुर पोस्ट मोती नगर मसौदा जिला अयोध्या से राजा बाबू शर्मा, रामबाबू शर्मा, राजबाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा जी का। धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं पर्यावरण से संबंधित लघु लोक कथाओं और परंपराओं की। आपको विशेष रूप से ये बता दें कि इस सप्ताह हम जो लोक कथाएं या प्राचीन मान्यताएं लेकर आए हैं, उनमें हमने प्रयास किया है कि वैज्ञानिकता और तर्क से बढ़कर लोगों की प्राचीन मान्यताओं को सामने लाएं, जो आज भी हमें महत्वपूर्ण संदेश देती हैं। लोक कथाएं और मान्यताएं भी बहुत कुछ कहती हैं, ये भी इतिहास का स्रोत हैं। इसी क्रम में आइए चलते हैं जापान के घने जंगलों में। आज हम बात करेंगे जापान की बहुत प्राचीन पर्यावरण संबंधी मान्यता कोदामा की। कोदामा एक मान्यता है जो सदियों से जापान के पर्वतीय और वन्य क्षेत्रों में चली आ रही है। इसके अनुसार कोदामा यानी पेड़ों की आत्मा। भारत की बात कहें या किसी भी देश की, वहां की प्राचीन मान्यताओं में अक्सर एक बात मानी जाती है कि जंगल या पेड़ों पर जीवात्मा या प्रकृति की आत्मा वास करती है, क्योंकि पेड़ों में भी जीवन है। आपको बता दें कि यदि जापान में लोग किसी पुराने जंगल में जाएं और यदि वहां कोई बहुत पुराना बहुत विशाल पेड़ दिखाई दे, तो लोग उस वृक्ष का अभिवादन करते हैं और उसे बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। वे मानते हैं कि पेड़ केवल लकड़ी, फलों, औषधियों और छाया का ही स्रोत नहीं है, लेकिन इस पर कोदामा का निवास हो सकता है। तो कल्पना कीजिए श्रोताओं, आप जापान में हैं और किसी जापानी टूरिस्ट गाइड के साथ समूह में जंगल घूमने गए हैं। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं और अचानक आप सबकी नजर एक बहुत पुराने पेड़ पर पड़ती है, जिसका तना इतना विशाल है कि उसे कई लोग मिलकर भी शायद पूरी तरह घेर न पाए। वो मातृवृक्ष है जो लगभग आधे जंगल का पोषण कर रहा है। तो ऐसे पेड़ को देखकर आपको गाइड जरूर बताएगा कि जापान की लोक मान्यता के अनुसार ये केवल पेड़ नहीं है, इसमें कोदामा का वास और आशीर्वाद है, इसीलिए लंबी आयु इसे मिली है। गाइड कहेगा कि पुराने पेड़ों का विशेष सम्मान करें, क्योंकि वे मातृवृक्ष हैं और आसपास के जंगलों को उन्होंने ही उगाया है, उससे ही दूसरे छोटे पेड़ों को जीवन मिला है। साथियों, और यही बात कोदामा की परंपरा को पर्यावरण की दृष्टि से बहुत रोचक बना देती है, क्योंकि जब किसी समाज को ये महसूस होने लगे कि पेड़ में भी जीवन है, पेड़ का भी सम्मान है,

0: तो कुल्हाड़ी उठाने से पहले, उनकी अंधाधुंध कटाई करने से पहले वो समाज 10 बार सोचेगा, और यही पर्यावरण के प्रति सच्ची जागरूकता है। कोदामा की लोकमान्यता हमें आधुनिक भाषा में एक बहुत सुंदर विचार देती है, पेड़ों और प्रकृति को केवल संसाधन मत समझिए, उसे जीवन का आधार समझिए। सचमुच कितनी अद्भुत बात है ना श्रोताओ। हम बड़ी आसानी से कह देते हैं ये लकड़ी है, ये पानी है, ये जमीन है, लेकिन प्रकृति हमें शायद ये याद दिलाती है, मैं केवल तुम्हारे उपयोग की वस्तु नहीं हूँ, मैं तुम्हारे जीवन का आधार हूँ। श्रोताओ, भारत, जापान, अमेरिका और दुनिया के सभी देशों में प्रकृति के प्रति ऐसी मान्यता है जो हमें संदेश देती हैं कि हमारे पूर्वजों ने प्रकृति और पेड़ों को कितनी गहरी और सम्मान की दृष्टि से देखा था। तभी तो हमारे भारत में भी पेड़ों या वनस्पति को नमन किया जाता है। तो उमंग के हमारे प्रिय श्रोताओं, जब भी किसी पुराने पेड़ के पास से गुजरें, एक पल जरूर रुकिए, उसकी छाल को देखिए, उसकी शाखाओं को देखिए और सोचिए, इस पेड़ ने हमसे पहले न जाने कितनी ऋतुएं देखी होंगी, कितनी पीढ़ियां आई और चली गईं, और ये पेड़ हमें सांस और जीवन देता हुआ अब भी खड़ा है। और शायद यही प्राचीन जापानी परंपरा कोदामा की सबसे सुंदर सीख का सारांश है, क्योंकि जिस दिन से हम पेड़ों को केवल काटे जाने वाली लकड़ी के रूप में देखना बंद कर देंगे, उसी दिन से शायद हम जंगल को भी केवल जमीन का एक टुकड़ा समझना बंद कर देंगे। तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी जापान की कोदामा परंपरा पर। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से, जापान की कोदामा परंपरा में विशेषकर पुराने पेड़ों को बहुत सम्मान की दृष्टि से क्यों देखा जाता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। जापान की कोदामा परंपरा में विशेषकर पुराने पेड़ों को बहुत सम्मान की दृष्टि से क्यों देखा जाता है? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वॉटर। कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता पर आधारित ये एक संगीत प्रधान कार्यक्रम है, जिसके द्वारा बताया गया है कि निरंतर अभ्यास और कार्य करते रहने से असंभव से भी असंभव लगने वाला कार्य संभव हो जाता है।
1: हेलो चिल्ड्रन।
2: हेलो मैम।
1: हाउ आर यू ऑल?
2: वी आर फाइन मैम।
3: आई एम गुड मैम।
1: वेरी गुड, वेरी गुड दैट यू ऑल आर गुड। डू यू लाइक गोइंग टू द गार्डन?
2: यस।
1: What do you see in the garden? Tell me. Vanya, Soham, Lavish, what do you see in the garden?
4: I see beautiful flowers.
1: And any other thing that you like in a garden?
5: I like sitting under the tree.
1: And you, Soham?
6: I like to see butterflies.
1: Yes. Butterflies are really beautiful. Now tell me, do you hear something in the garden? Children, tell me. Any sound?
2: Yes, ma'am.
7: Yes, ma'am. I listen to the sweet chirping of birds.
1: Very good that there are so many beautiful things in a garden, isn't it?
2: Yes, ma'am.
1: So children, when all these beautiful things come together, they make what? They all make a beautiful
2: garden!
1: Wonderful! You have replied so well. So children, when small and little things come together, they make a big and beautiful thing. Okay?
2: Yes, ma'am.
1: All right. So now, let us have some puzzle. Ready?
2: Yes, ma'am.
1: Okay. Tell me, if so many trees are together, what will they make?
2: A jungle.
1: That's correct. And if so many grains of sand are together, as far as you can see,
2: they will make a desert.
1: Very nice. Let us recite a poem now. Would you like to recite with me?
2: Yes, ma'am.
1: This poem will tell us how small things make

0: So children, you have just heard this song. What did we learn? Tell me.
1: Little things together make big things.
0: Little things together make
2: big things.
0: Yes. So, if all of you little children live together with love and kindness, you will spread happiness all around.
3: लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, अभी आपने सुना ये खूबसूरत गीत. और अब सुनते हैं कार्यक्रम श्री अरविंद का शैक्षिक दर्शन. इस कार्यक्रम में महान तपस्वी, दार्शनिक और चिंतक श्री अरविंद के शैक्षिक दर्शन के बारे में एक सुंदर नाटक द्वारा समझाया गया है और उनकी शैक्षिक प्रविधियों की चर्चा की गई है.
4: महर्षि अरविंद, जिन्हें अरविंदो के नाम से भी पुकारा जाता है, एक महान दार्शनिक थे. शिक्षा के क्षेत्र में उनकी दार्शनिक मान्यताओं को पूरी दुनिया में लोग गंभीरता से लेते हैं. प्रस्तुत है श्री अरविंद का जीवन और उनका शैक्षिक दर्शन.
5: श्री अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ. उनके पिता डॉक्टर कृष्णधन घोष चाहते थे कि अरविंद की शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी में हो और उनका लालन पालन पाश्चात्य संस्कृति में हो. अरविंद इंग्लैंड गए और उन्होंने ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच एवं अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन किया. उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1893 के प्रारंभ में वो भारत वापस आए. यहां बड़ौदा स्टेट की प्रशासकीय एवं शैक्षिक सेवा में काम किया और वहीं के एक कॉलेज में प्राध्यापक हो गए. इस बीच उन्होंने धर्म, इतिहास, राजनीति, साहित्य एवं संस्कृति का अध्ययन किया. उसके बाद श्री अरविंद ने भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा की एक नई परिकल्पना प्रस्तुत की.

1914 में मीरा रिशार नामक फ्रांसीसी महिला पांडिचेरी आई और वो श्री अरविंद की आध्यात्मिक साधना में सहभागी बनी। बाद में 1920 में स्थायी रूप से भारत में बसकर उन्होंने काम करना शुरू किया। 1926 में उन्होंने श्री अरविंद के पांडिचेरी स्थित आश्रम की स्थापना की और उसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का संयोजन किया। उनकी निष्ठा एवं सेवा भावना से प्रभावित होकर लोग उन्हें माताजी कहने लगे। पांच दिसंबर 1950 को श्री अरविंद ने समाधि ले ली और उसके बाद माताजी ने आश्रम का पूरा कार्यभार संभाल लिया। मनुष्य के बारे में श्री अरविंद की जो सोच थी उसे माताजी ठोस आकार देना चाहती थी। इसी उद्देश्य से उन्होंने 1943 में श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र की स्थापना पांडिचेरी में की। ये केंद्र शिक्षा जगत में शोध के संस्थान के रूप में आज भी कार्यरत है।

एक दिन राम कृपाल नाम का एक शोध छात्र पौंडिचेरी के शिक्षा केंद्र में आता है। वहां उसके ठहरने एवं खाने की पूरी व्यवस्था की जाती है। शोध कार्य में उसको दिशा निर्देश देने के लिए एक वरिष्ठ अध्यापक श्री सुबोध को राम कृपाल के साथ लगा दिया जाता है। शोध छात्र राम कृपाल आश्रम की व्यवस्था एवं वातावरण से बहुत प्रभावित हो जाता है।

0: आहा, वाकई यहाँ की सुबह भी कितनी मनोहर है। इन दो चार दिनों में ही मुझे यहाँ की हर चीज से लगाव हो गया है।
1: यही तो हमारा उद्देश्य है। हम सब एक ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अमित स्मृतियां लेकर वापस जाए।
0: सुबोध जी, अब तक तो हमने यहाँ के सभी विभागों, शिक्षा के तौर तरीके और व्यवस्था के बारे में काफी कुछ जान लिया है, पर अभी असली काम बाकी है।
1: असली काम? वो क्या है भला राम कृपाल?
0: यही कि मैं जानना चाहता हूँ कि श्री अरविंद का शैक्षिक दर्शन वास्तव में क्या है।
1: राम कृपाल
0: जी,
1: इसे श्री अरविंद का व्यावहारिक दृष्टिकोण ही कहा जाएगा कि उन्होंने अपने शैक्षिक दर्शन में हर पहलू पर ध्यान दिया। वो चाहे विद्यालय का वातावरण हो, चाहे छात्रों का मनोविज्ञान हो, या फिर शिक्षकों का अपना दायित्व।
0: हाँ,
1: मैं 1945 के आसपास श्री अरविंद के संपर्क में आया।
0: जी,
1: उस समय मैं बहुत छोटा था, यही कोई 14 साल की उम्र रही होगी मेरी।
0: अच्छा,
1: तब ये विद्यालय ऐसा नहीं था, बस छोटा सा आश्रम हुआ करता था। उस समय अंग्रेजों का शासन था और भारतीय छात्र अधिकतर पश्चिम

0: मूल्यों पर आधारित अंग्रेजी शिक्षा पाते थे। श्री अरविंद के पिता ने उन्हें भी उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा।
1: जी।
0: शिक्षा पूरी कर वो अपने देश लौटे और स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ गए। बाद में 1908 में वो जेल भी गए। इसके बाद उन्होंने प्रचलित शिक्षा प्रणाली में सुधार का लक्ष्य अपनाया और देश के सामने एक मुक्त, स्वदेशी और उद्देश्यपूर्ण शिक्षा की विचारधारा रखी।
1: वो क्या था सुबोध जी?
0: श्री अरविंद कहा करते थे, जो शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित है वो शिक्षा शिक्षा नहीं है। ज्ञान तो मनुष्य के भीतर ही है, उसे सिर्फ शिक्षा के द्वारा सामने लाया जाता है।
1: जी।
0: बच्चों का ध्यान उनके अपने ज्ञान के साधनों की ओर खींचना चाहिए। हम जबरदस्ती में कुछ नहीं सिखा सकते, हमें तो सिर्फ उसकी बुद्धि को प्रशिक्षित करना होता है।
1: जी।
0: विद्यार्थी को उसके अपने वातावरण में ही विकसित करना चाहिए, अपने राष्ट्र, समाज और समय के अनुकूल। इसीलिए शिक्षा भी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। तथ्यों की जानकारी देना, डिग्रियां बांट देना ही शिक्षा नहीं, उसे ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वो पूर्ण मानव बन सके। अपनी पसंद का विषय चुने और मंजिल भी खुद तय करें। जिस तरह पशु से मानव का विकास हुआ है, उसी तरह अब मानव से अति मानव का विकास होना है।
1: प्राचीन भारतीय शिक्षा के बारे में वो क्या सोचते थे?
0: मुझे अच्छी तरह याद है कि श्री अरविंद ने प्राचीन भारतीय शिक्षा की बड़ी प्रशंसा की थी।
1: जी।
0: वो इसे उपयोगी मानते थे, पर पश्चिमी या आधुनिक शिक्षा को उन्होंने पूरी तरह नकारा नहीं।
1: मैं कुछ समझा नहीं सुबोध जी।
0: सुनो रामकृपाल, बात यह है कि श्री अरविंद ने एक मिलीजुली शिक्षा पद्धति की परिकल्पना की थी।
1: जी।
0: जिसमें समय के साथ जुड़ने वाले विषय भी शामिल हों। श्री अरविंद प्राचीन समय में ऋषियों द्वारा अपनाए गए कई शैक्षिक प्रयोगों के प्रशंसक भी थे। इनमें प्रमुख थी गुरु शिष्य परंपरा और ब्रह्मचर्य का पालन।
1: पर आज के जमाने में गुरु शिष्य परंपरा?
0: हाँ, क्यों नहीं भाई, इस आश्रम में जहाँ बैठे हैं,
1: हाँ?
0: पूरी तरह उसी परंपरा का पालन हो रहा है।
1: और ब्रह्मचर्य?
0: रामकृपाल
1: जी,
0: ब्रह्मचर्य के पालन से विद्यार्थी का मन और शरीर साफ होता है और उसमें शिक्षा को लेकर एकाग्रता आती है।
1: जी।
0: वो ठीक कहते थे कि प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की सफलता का रहस्य भारतीय शैक्षिक चिंतन ही था।
1: आज तो उबाऊ होती जा रही है हमारी शिक्षा व्यवस्था। ऊपर से बस्ते का बोझ, अध्यापक का गुस्सा और घर के लिए बच्चे को दिया गया काम। अरे हाँ सुबोध जी, पाठ्यक्रम और शिक्षा की पद्धति के बारे में श्री अरविंद क्या कहते थे?
0: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा के दो तरीके या प्रणालियां हैं।
1: जी।
0: पहली प्रणाली है समकालिक और दूसरी क्रमिक। पहली पद्धति जरा आधुनिक है, जिसमें बहुत से विषयों की थोड़ी थोड़ी पढ़ाई एक ही समय में की जाती है।
1: जी हाँ।
0: पर इसका नतीजा ये होता है कि जिस विषय का पूरा ज्ञान एक साल में हो सकता है, वैसा 7 वर्षों में भी नहीं मिल पाता। जबकि दूसरी यानी क्रमिक प्रणाली ज्यादा अच्छी है, जो प्राचीन समय में लागू थी। इसमें 1-2 विषयों की शिक्षा गहराई से पाने के बाद ही बाकी विषय छुए जाते थे। पाठ्यक्रम तय करते वक्त अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो अच्छा होगा।
1: बिल्कुल ठीक।
0: वास्तव में श्री अरविंद चाहते थे कि शिक्षा का कार्य लचीलेपन के साथ हो, ना कि बनावटी या कठिन। वो इससे भी इनकार करते थे कि एक ही विषय ज्यादा पढ़ने से छात्र की दिलचस्पी कम हो जाती है। शायद इसीलिए वो बच्चे की रुचि पहले ही समझकर शिक्षा देने को ठीक मानते थे।
1: जी। अब आप ये बताइए कि श्री अरविंद ने अध्यापकों के कर्तव्य के बारे में क्या कहा?

0: असल बात तो ये है कि उनका शैक्षिक दर्शन अध्यापकों पर ही केंद्रित है। जैसा कि मैंने बताया, शिक्षा बालक की मानसिक क्षमता और वातावरण के अनुरूप ही दी जानी चाहिए।
1: जी,
0: अब सवाल ये है कि शिक्षक ऐसा क्या करे और क्या ना करे कि शिक्षा के नतीजे अच्छे आए। श्री अरविंद के मुताबिक हर व्यक्ति में दिव्यता का अंश है, उसके अपने कुछ शारीरिक और मानसिक खूबियां हैं, बस इन्हें खोजना और प्रयोग में लाने लायक बनाना ही शिक्षक की पहली जिम्मेदारी है। अध्यापक सिखाने वाला ना होकर सहायक और मित्र हो, वो बच्चे में सभी 6 इंद्रियों के ठीक उपयोग की क्षमता विकसित करे।
1: 6 इंद्रियों में? भला ये कैसे हो सकता है, हमारी तो 5 ही इंद्रियां हैं।
0: दरअसल छठी इंद्री से श्री अरविंद का तात्पर्य है बच्चे का मानस। ये 5 इंद्रियों दृश्य, श्रव्य, ध्यान, स्वाद, स्पर्श के रूप में वस्तुओं को ग्रहण कर उन्हें विचार संवेदना के रूप में परिणत करता है।
1: जी,
0: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षक का काम सुझाव देना है, कुछ थोपना या लादना नहीं। वो तो छात्र को बस ये बताए कि उसमें कौन कौन सी दक्षताएं छिपी हुई हैं और इसे बाहर लाने के लिए वो किस तरह का प्रयास करे। शिक्षक को मूर्ति निर्माता की तरह समझना गलत है, बल्कि उसे तो एक ना दिखाई देने वाली चीज अर्थात मन से संबंध बनाना होता है।
1: जी हाँ,
0: उनके शिक्षा सिद्धांत का महत्वपूर्ण पहलू यह है

में शामिल हैं जिसकी ठीक ठीक व्याख्या माता जी करती हैं, जिन्होंने इस पद्धति को व्यावहारिक रूप देने में अपना सारा जीवन लगा दिया।

0: श्री अरविंद की शिक्षा की जो समग्र दृष्टि थी उसको ठोस व्यावहारिक धरातल पर लाने का काम माताजी ने किया। माताजी ने एक नई दुनिया, नई मानवता, नया समाज और नई चेतना के निर्माण के श्री अरविंद के सपने को साकार किया। इसका आदर्श पूर्ण शिक्षा है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी आंतरिक पूर्णता प्राप्त करने के लिए सम्मिलित रूप से प्रयास करता है। श्री अरविंद आश्रम में आध्यात्मिक मूल्यों से अनुप्राणित मनुष्य के संपूर्ण विकास के लिए उपयुक्त वातावरण है। इसका लक्ष्य है पूर्ण शिक्षा के द्वारा मानवीय प्रेम और विश्व बंधुत्व का प्रसार। यहाँ किसी भी जाति, भाषा, धर्म या क्षेत्र के लोग प्रवेश ले सकते हैं। इसके अलावा देश के विभिन्न भागों में श्री अरविंद के शैक्षिक दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए संस्थाएं कार्य कर रही हैं, परंतु अभी भी काफी कुछ करना शेष है। शैक्षिक दर्शन के आधार पर संस्थाएं काम कर रही हैं। वास्तव में श्री अरविंद के सिद्धांतों के वास्तविक प्रचार प्रसार के लिए अभी काफी कुछ करना शेष है। उधर शोध छात्र राम कृपाल ने श्री अरविंद के बारे में पौंडेचेरी से सारी जानकारियां जुटाने के बाद लौटने की तैयारी की और वहां से एक संकल्प के साथ चल पड़ा।
1: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो उमंग की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना, अर्षद, कुसुमलता और वीरेंद्र के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: মাসের ভাতা হিসেবে সরাসরি টাকা পাঠানোর কাজ শুরু হবে। প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকর্মা প্রকল্প আগামীকাল 3 বছর পূর্ণ করতে চলেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 2023 সালে সূচনা করা এই প্রকল্পে ইতিমধ্যেই 30 লক্ষ সুবিধাভোগীর নিবন্ধন সম্পূর্ণ হয়েছে। জাতীয় ক্যাডেট কোর NCC-র 20 জনের মহিলা দল লাদাখে সুউচ্চ পর্বতারোহণ অপরাজিতা পারাংলা সফলভাবে সম্পন্ন করেছেন। 30 দিন ধরে প্রায় 250 কিলোমিটার অতিক্রম করেন তারা। এই মুহূর্তের খবর আপাতত এ পর্যন্তই।
1: গানে বাজুক মনের রেডিও শুনছো 107 FM রেইনবো, সাত সুরে সারাদিন।
2: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: শুনছো ক্যাফে কলকাতা, ক্যাফে কলকাতা 107 FM রেইনবোতে। ক্যাফে কলকাতা।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक।

7:09 है, स्टूडियो की घड़ी का समय 107 एफएम रेनबो पर दोबारा शर्मिष्ठा करती है आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। और इस वक्त लेकर आ चुकी हूँ एक अलग और ख़ास कार्यक्रम जिसे आप सुनते हैं हर रोज़ इसी समय इसी चैनल के ज़रिए इसी जगह से, यानी कि 107 एफएम रेनबो के अलावा न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी हमारे ये प्रसारण इस वक्त आप सुन पा रहे हैं। और शर्मिष्ठा के साथ आप जुड़े हुए हैं आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम के साथ जिसका नाम है छायालोक। और बुधवार की शाम है तो बुधवार की शाम छायालोक के अंतर्गत हम लेकर आते हैं आपके लिए कुछ खास कुछ अलग, जिसमें बात होती है बॉलीवुड से जुड़े हुए जाने माने हस्तियों को लेकर। और आज की शाम छायालोक के अंतर्गत हम बात करते हैं बॉलीवुड की जानी मानी जोड़ी को लेकर, यानी कि हम साथ साथ इस कार्यक्रम में बातें होती हैं बॉलीवुड से जुड़ी कुछ ऐसी जोड़ियों को लेकर जिन्होंने साथ काम किया और उनकी जोड़ी ने एक अलग मुकाम हासिल किया। जी हाँ, और ऐसी एक जोड़ी के बारे में बात होगी छायालोक कार्यक्रम के पहले सेगमेंट पे। लेकिन उससे पहले आज की जोड़ी आखिर कौन सी है, क्या है, उस जोड़ी का नाम बात करूंगी उनके बारे में। लेकिन फिलहाल एक प्यारा सा गीत अदनान सामी सुनिधि चौहान की आवाज़ में और कुमार शानू शादना सरगम की आवाज़ में सुन रहे थे आप कार्यक्रम का सबसे पहला गीत। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और एक अगला तराना आप सभी सुनने वालों के लिए।

अजनबी फिल्म से सुन रहे थे आप इस गीत को अदनान सामी और सुनिधि चौहान की आवाज़ में। फिलहाल स्टूडियो की घड़ी बता रही है कि 7:15 है स्टूडियो की घड़ी का समय और इस वक्त आप जुड़े हुए हैं आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम के साथ जिसका नाम है छायालोक। और बुधवार की शाम हम छायालोक के अंतर्गत लेकर आते हैं हम साथ साथ, जिसमें बातें होती हैं बॉलीवुड से जुड़ी जानी मानी जोड़ियों को लेकर। तो आज की हमारी जोड़ी कौन सी है उसी के बारे में मैं बात करने वाली थी। तो चलिए क्यों ना ऐसा करें कि आज के इस सेगमेंट में, जी हाँ छायालोक कार्यक्रम के पहले सेगमेंट में, अक्षय कुमार के साथ अलग अलग अभिनेत्रियों की जोड़ी को लेकर बात की जाए। वैसे तो अक्षय कुमार ने अनगिनत फिल्मों में अभिनय

किया है। और उससे भी मज़ेदार बात यह है कि अक्षय कुमार ने जैसे कि अनगिनत फिल्में की हैं, ठीक उसी तरीके से अनगिनत अभिनेत्रियों के साथ उनकी जो केमिस्ट्री रही है वो बहुत ज़्यादा खूब रही है। और कई सारी फिल्मों में अलग अलग अभिनेत्रियों के साथ उन्होंने बेहतरीन अभिनय करके दिखाया है। तो चलिए आज की हमारी जोड़ी अक्षय कुमार के साथ अलग अलग अभिनेत्रियों को लेकर करेंगे बात। तो सबसे पहले बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी कि अक्षय कुमार ने अपने 3 दशक से भी लंबे करियर में कई दिग्गज और नई अभिनेत्रियों के साथ काम किया है। ऑन स्क्रीन बेहतरीन केमिस्ट्री से लेकर ऑफ स्क्रीन तक उनकी जर्नी बहुत ही दिलचस्प रही है। तो सबसे पहले क्यों ना रवीना टंडन के साथ अक्षय कुमार की खूबसूरत जोड़ी को लेकर करें बात। वैसे तो 90 के दशक में अक्षय और रवीना की जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। दोनों की ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री भी खूब चर्चा में थी। और प्रमुख फिल्मों की अगर बात करें तो मोहरा के अलावा खिलाड़ियों का खिलाड़ी के साथ पुलिस फोर्स जैसी फिल्मों में हमने रवीना के साथ अक्षय कुमार की बेहतरीन जोड़ी को देखा था। इसके अलावा कैटरीना कैफ के साथ भी अक्षय कुमार की जोड़ी को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। और एक इंटरव्यू के दौरान खुद अक्षय कुमार का ये कहना था कि कैटरीना कैफ को अपनी पसंदीदा हीरोइन के तौर पर अक्षय कुमार मानते हैं और दोनों ने एक साथ कई ब्लॉकबस्टर कॉमेडी और एक्शन फिल्में दी हैं। प्रमुख फिल्मों की अगर बात करें तो नमस्ते लंदन के साथ, सिंह स्किन, वेलकम के साथ, दे दनादन और 30 मार खा जैसे फिल्मों में कैटरीना कैफ के साथ अक्षय कुमार की बेहतरीन जोड़ी को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। रुख करते हैं फिल्मी गीत की ओर और उसके बाद और भी बेहतरीन अभिनेत्रियों के साथ आज के हमारे खिलाड़ी अक्षय कुमार के साथ बेहतरीन जोड़ी को लेकर होगी बात।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक

7:30 है स्टूडियो की घड़ी का समय। 107 FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है छायालोक। और बुधवार की शाम हम लेकर आते हैं आपके लिए बहुत खास, यानी कि छायालोक के अंतर्गत हम साथ साथ इस कार्यक्रम के साथ आप जुड़ते हैं। ठीक 7 बजे से लेकर 9 बजे तक चलता रहता है।

से कार्यक्रम का सिलसिला। और इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आप नई ट्यून किया है 107 एफएम रेनबो के अलावा न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी हमारे ये प्रसारण इस वक्त आप सुन पा रहे हैं, जुड़े हैं इस कार्यक्रम के साथ, सुन रहे हैं आपकी रेडियो दोस्त शर्मिष्ठा के साथ। और शर्मिष्ठा आज के इस कार्यक्रम में बात कर रही है खिलाड़ी, जी हाँ, बॉलीवुड के जाने माने खिलाड़ी कुमार यानी कि अक्षय कुमार के साथ।

अब अलग अलग अभिनेत्रियों की केमिस्ट्री को सेट करने के बारे में बात हो रही है, तो वहीं पर शिल्पा शेट्टी के साथ उनकी केमिस्ट्री आखिर कैसी रही, इसके बारे में क्या आप नहीं जानना चाहेंगे, और शिल्पा शेट्टी के साथ अक्षय कुमार की जोड़ी आखिर कैसी रही, इसके बारे में खैर अलग से बताने की ज़रूरत शायद मुझे नहीं है, क्योंकि हम सभी को पता है कि 90 के दशक में दोनों के रोमांस के चर्चे काफ़ी आम थे। जी हाँ, और अक्षय कुमार के साथ शिल्पा शेट्टी की केमिस्ट्री को लोगों ने बहुत बहुत ज़्यादा पसंद किया था। उन्होंने कुछ बेहतरीन एक्शन और म्यूजिकल फिल्मों में साथ काम किया, और कुछ बेहतरीन फिल्मों की अगर मैं बात करूं तो मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी इस फिल्म के अलावा धड़कन के साथ जानवर जैसे फिल्मों में दोनों के बेहतरीन अभिनय को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। अच्छा, ये तो बात हुई शिल्पा शेट्टी की, इसके अलावा प्रियंका चोपड़ा के साथ भी अक्षय कुमार की केमिस्ट्री को लोगों ने कुछ कम अंक नहीं दिए थे, क्योंकि अक्षय कुमार और प्रियंका की ऑन स्क्रीन जोड़ी बेहद ही बोल्ड और रोमांटिक मानी जाती थी। उनकी कुछ फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका ही मचा दिया था, और ख़ास फिल्मों की बात आप सोच रहे हैं ना कि ऐसी कौन सी फिल्में हैं जिसमें अक्षय कुमार के साथ प्रियंका चोपड़ा ने साथ काम किया, तो चलिए बता ही देती हूँ आपको कि ऐतराज़ के साथ साथ मुझसे शादी करोगी के अलावा वक्त, द रेस अगेंस्ट टाइम, इन फिल्मों में प्रियंका चोपड़ा के साथ बॉलीवुड के जाने माने खिलाड़ी कुमार की जोड़ी को लोगों ने पसंद किया था। एक फिल्मी गीत और उसके बाद और भी बेहतरीन जोड़ी को लेकर करूंगी बात इसी कार्यक्रम में।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
1: सात बजकर 7:40 इस जुड़ी घड़ी का समय और छायालोक के अंतर्गत हम साथ साथ में आज हम बात कर रहे हैं अक्षय कुमार के साथ अनगिनत अभिनेत्रियों की ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन जोड़ी को लेकर। और फिलहाल बात करना चाहूँगी एक ऐसी अभिनेत्री के साथ अक्षय कुमार की जोड़ी को लेकर जहाँ पर ऑन स्क्रीन जोड़ी को लोगों ने तो पसंद किया ही, लेकिन साथ ही साथ ऑफ स्क्रीन जोड़ी, इस अभिनेत्री के साथ ऑफ स्क्रीन जोड़ी भी काफ़ी कमाल की रही और आज के समय में भी इस जोड़ी को लेकर अक्सर चर्चाएं होती रहती हैं। बात कर रही हूँ अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना को लेकर। फिल्म मेला के दौरान अक्षय कुमार ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया था और दोनों ने साल 2001 में शादी के बंधन में बंधने का फैसला किया था और उसके बाद शादी हो जाने के बाद ट्विंकल ने फिल्मों से दूरी बना ली। भले ही दोनों ने बहुत ज़्यादा फिल्में एक साथ नहीं की हों, लेकिन इसके बावजूद जितनी भी फिल्मों में साथ उन्होंने काम किया, उन फिल्मों के जरिए इस जोड़ी को लोगों ने ऑन स्क्रीन तो पसंद किया ही, लेकिन आज के समय में भी इस जोड़ी को लेकर ऑफ स्क्रीन चर्चाएं होती रहती हैं। और ख़ास फिल्मों की अगर मैं बात करूं तो इंटरनेशनल खिलाड़ी के साथ साथ जुल्मे जैसी फिल्मों में दोनों के अभिनय को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। चलिए अब कार्यक्रम को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और फिलहाल बात करूं अभिनेत्री आशा चुल्हा के साथ अक्षय कुमार की ऑन स्क्रीन जोड़ी को लेकर। अक्षय कुमार के करियर की शुरुआती फिल्मों में आशा उनकी लीड एक्ट्रेस रही हैं और दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने बहुत बहुत ज़्यादा पसंद किया था। और बेहतरीन फिल्मों की अगर बात की जाए तो खिलाड़ी के साथ वक्त हमारा है और दिल की बाजी जैसी फिल्मों में आयशा जुल्खा के साथ अक्षय कुमार की बेहतरीन जोड़ी को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था और तभी तो इस जोड़ी को बेहतरीन बनने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिली थी। और एक और अभिनेत्री के बारे में भी बात करूँगी जिनके साथ ऑन स्क्रीन जोड़ी ने लोगों ने 90 के दशक में बहुत ज़्यादा पसंद किया था और बात कर रही हूँ इस वक्त अभिनेत्री ममता कुलकर्णी के लिए। अक्षय कुमार और ममता कुलकर्णी ने 90 के दशक में हिंद सिनेमा में एक साथ काम किया और इनकी मुख्य रूप से दो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहीं। और ख़ास फिल्मों की अगर बात करें तो सबसे बड़ा खिलाड़ी जो कि आई थी 1995 में और उसके बाद उससे पहले, जी हाँ, 1993 में वक्त हमारा है, इन दोनों फिल्मों में ममता कुलकर्णी के साथ अक्षय कुमार की ऑन स्क्रीन जोड़ी को लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया था।

7:50 होने का है और चलिए अक्षय कुमार के साथ अगली अभिनेत्री विद्या बालन की केमिस्ट्री को लेकर कर लेते हैं बात। और ये जो जोड़ी है अक्षय कुमार के साथ विद्या बालन की केमिस्ट्री, इस जोड़ी ने जितने भी फिल्में की हैं उस फिल्म की कहानी को लेकर अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ लव स्टोरी से हटकर एक खास अलग तरह की कहानी करते हुए, कहानी के साथ काम करते हुए इन फिल्मों में इस जोड़ी को साथ हमने देखा है। और बेहतरीन फिल्मों की अगर मैं बात करूं तो भूल भुलैया के अलावा हे बेबी और मिशन मंगल जैसी फिल्मों में इस जोड़ी को हमने साथ काम करते देखा है। और रोमांटिक कहानी के अलावा कुछ अलग, कुछ हटकर इन फिल्मों की कहानी रही है। और इन फिल्मों में इस जोड़ी ने कमाल का अभिनय किया है और शानदार अभिनेत्री जिनके साथ अक्षय कुमार ने बहुत खास यानी कि लीड से हटकर और बेहतरीन ड्रामा फिल्में इस जोड़ी ने एक साथ काम करते हुए दी है। और बात करूंगी अगर इस साल की अगर बात करें यानी कि 2026 में अक्षय कुमार को वामिका गब्बी के साथ अभिनय करते हुए देखा गया है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे थे अक्षय कुमार के साथ अलग अलग अभिनेत्रियों की ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन जोड़ी को लेकर कर रहे थे बात इस सेगमेंट में।

7:55 है सूर्य की घड़ी का समय और छायालोक कार्यक्रम के पहले भाग को करना होगा यहीं पर समाप्त। आशा भोंसले और अभिजीत की आवाज़ में सुनिए इस भाग का अगला और आखिरी गीत, और अगले भाग में आपके साथ जुड़ेंगी आपकी रेडियो दोस्त पूनम। तब तक के लिए ट्यून रहेगा 107 FM रेनबो के साथ। छायालोक के अंतर्गत हम साथ साथ इस कार्यक्रम के पहले भाग में आप सुन रहे थे आपकी रेडियो शर्मिशा को, और आज के इस भाग में बात हो रही थी अक्षय कुमार के साथ अनगिनत खूबसूरत अभिनेत्रियों की ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन जोड़ी को लेकर कर रहे थे बात। और फिलहाल रुख करते हैं फिल्मी गीत की ओर। आशा भोंसले अभिजीत की आवाज़ में फिल्म खिलाड़ी से ये गीत आप सभी सुनने वालों के लिए।

कहते हैं कि जब हौसलों में फौलाद और रगों में जीतने का जुनून हो तो कठिन से कठिन चुनौती घुटने टेक देती है। जापान के आइची नागोया की धरती पर आयोजित होने वाले एशियन गेम्स 2026 में इसी की वानगी पेश करने के लिए भारतीय दल तैयार है। इस बार उम्मीद है कि हमारे खिलाड़ी पिछली बार की तरह न सिर्फ पदकों का शतक पार करेंगे बल्कि मेडल्स के नंबर्स को उससे भी आगे ले जाएंगे। हमें इस बार सभी खेलों में न सिर्फ पदक बल्कि स्वर्णिम सफलता की उम्मीद है। हमारे जांबाज एशिया के सबसे बड़े खेल मंच पर तिरंगा लहराने और पिछले सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ने के दृढ़ संकल्प के साथ मुकाबले को तैयार है। 4 सालों की कठिन तपस्या और कड़ी चूर मेहनत से निकले पसीने की बूंदों से आची नागोया की जमीन को सींचा जाएगा और फिर उससे सोने चांदी और कांसे के पदकों की फसल लहलाएगी। इन्हीं उम्मीदों और आशाओं के साथ आकाशवाणी की तरफ से पेश है विशेष श्रृंखला चीयर फॉर भारत। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे पदकों की सबसे बड़ी उम्मीद शूटिंग कुश्ती बॉक्सिंग तीरंदाजी और स्क्वाश की। इन खेलों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दो खास मेहमान, भारत की युवा महिला पहलवान सारिका मलिक और खेल पत्रकार अभिषेक रॉय। हमारे साथ सारिका मलिक मौजूद हैं तो सवालों की शुरुआत कुश्ती से ही करते हैं। सारिका,

0: चाहे एशिया का सबसे बड़ा खेल मंच एशियन गेम्स हो या फिर दुनिया का सबसे बड़ा खेल मंच ओलंपिक, कुश्ती एक ऐसा खेल है जिसमें हमें पदकों की सबसे ज्यादा उम्मीद रहती है। पिछली बार एशियन गेम्स में हमारे पास एक सिल्वर समेत कुल 6 पदक थे। अब खुद कई प्रतियोगिताओं में भारतीय टीम की सदस्य रही हैं और अपने साथी खिलाड़ियों की प्रतिभा को अच्छी तरह से जानती हैं। इस बार कुश्ती में क्या उम्मीदें हैं?
1: इस बार कुश्ती से हमें पहले की तरह ही बहुत उम्मीदें हैं। भारत में कुश्ती खेल जो है वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण खेल माना जाता है, बहुत ही फेमस खेल है। ओलंपिक्स में और एशियन गेम्स में हमेशा ये मेडल देता है। हर ओलंपिक्स में आप देख सकते हैं 2004 से कुश्ती ने मेडल दिए हैं और एशियन गेम्स में भी हर साल 4 से 5 मेडल तो कम से कम कुश्ती देता ही है। इस बार भी हमारी जो टीम है वो बहुत ही शानदार तैयार हुई है, बहुत ही अच्छे प्लेयर्स उसमें हैं। आप बात कर सकते हैं निशा दहिया की, जो कि आपने ओलंपिक्स में भी देखा था, उनको इंजरी जरूर हुई थी ओलंपिक्स में लेकिन उनका जो प्रदर्शन था वो बहुत ही शानदार था। आप बात कर सकते हैं सुजीत कलकल की, जो कि अभी फिलहाल वर्ल्ड नंबर 1 चल रहे थे, बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडेंट आप बोल सकते हैं, वो रेसलिंग में हैं और उनसे पूरी उम्मीद है कि वो गोल्ड ही लेके आएंगे। आप देख सकते हैं दीपक पूनिया, एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी जो हैं, और मानसी हलावत है, मनीषा भनवाला है, प्रिया मलिक हैं जो कि 2 बार की जूनियर वर्ल्ड चैंपियन हैं। तो टीम हमारी बहुत ही अच्छी है और हम हमेशा की तरह उनसे बहुत उम्मीदें लगाए हुए हैं।
0: तो अभिषेक, कुश्ती दल में होंगजू एशियन गेम्स के मेडलिस्ट दीपक पूनिया, अमन सहरावत और अंतिम पंघाल फिर से मौजूद हैं। आपको लगता है कि आची नागोया में गोल्ड मेडल का बैरियर टूटेगा और हमारे खाते में स्वर्णिम सफलता भी आएगी?
2: बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने पहले भी मेडल इस प्लेटफॉर्म में ये जीत चुके हैं, तो इनको पता है कि किस तरह का कंपटीशन होगा, क्या लेवल है। और जहां तक अंतिम पंगल का बात करें तो वो 2-time वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट है, उनका काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। पेरिस ओलंपिक्स में उनका उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था लेकिन उसके बाद से जिस तरह से उन्होंने टर्न अराउंड किया है, लगातार वो अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है इंटरनेशनल लेवल पे। दीपक पूनिया एक नए वेट क्लास में आ रहे, वो 86 में थे, अभी इस बार वो ऊपर 97 में आ रहे, लेकिन उनका एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार खिलाड़ी है, बहुत अच्छा उनका एक्सपीरियंस है, तो वो एक्सपीरियंस इस प्लेटफॉर्म में काम आएगा। सुनील कुमार जो ग्रीको रोमन में 87 में, वो भी काफ़ी अच्छा खिलाड़ी है, वो भी मेडल जीत चुके थे लास्ट टाइम, तो ये एक काफ़ी एक्सपीरियंस और यंग टीम का कॉम्बिनेशन है रेसलिंग में।
0: सारिका, एशियन गेम्स से पहले पहलवानों की तैयारियों पर खास ध्यान दिया गया, उन्हें न सिर्फ एक्सपोजर के लिए बाहर भेजा गया बल्कि विदेशी जमीन पर ट्रेनिंग भी दी गई और फॉरनर कोच ने भी हमारे पहलवानों को ट्रेनिंग दी, इसका कितना फायदा इस बार मिलेगा?
1: बिल्कुल, इसका काफ़ी फ़ायदा आपको इस बार एशियन गेम्स में देखने को मिलेगा। मैं खुद नेशनल कैंप में रह रही हूँ और ट्रेनिंग कर रही हूँ नेशनल कैंप में, तो हमारे गर्ल्स रेसलिंग में फॉरेन कोच हैं, जापनीज कोच अकाशी, जो कि बहुत टेक्निकल हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे वर्ल्ड स्टेज पे जापान जो है वो वुमेन्स में लीड करता है, आप वर्ल्ड चैंपियनशिप देख सकते हैं, आप ओलंपिक्स देख सकते हैं, तो जापान के 2 से 3 गोल्ड आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। तो जापनीज कोच हमें उनकी टैक्टिक्स बताते हैं, टेक्निक्स बताते हैं, कैसे उनके साथ कॉम्पीट करना है, क्या उनकी स्ट्रेटजी रहेगी, क्या स्ट्रेटजी हमें लेके चलनी है, अपना ट्रेनिंग प्लान जैसे हमारा चेंज किया गया है। उनका मानना है कि जैसे बाउट्स अगर दिन में होती हैं तो हमारी ट्रेनिंग भी दिन में ही होनी चाहिए, जो हमारी बाउट प्रैक्टिसेस होती हैं।
0: अच्छा।
1: स्पीड वर्क पे उन्होंने बहुत फोकस किया है, एंड्योरेंस पे, साथ ही हमारे हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर इयान बटलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी हमारी बहुत हेल्प कर रहे हैं हर तरह से। तो ऐसे ही फ्री स्टाइल में आप देख सकते हैं कोच शाको हैं, सेम अभी जो फ्री स्टाइल की टीम थी वो आर्मेनिया ट्रेनिंग के लिए गई थी, ट्रेनिंग कैंप था, बहुत अच्छा फॉरेन एक्सपोजर था। उसके बाद रशिया में उन्होंने एक टूर्नामेंट खेला जिसमें उन्हें रशियन रेसलर्स के साथ कॉम्पीट करने का मौका मिला, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस वहाँ पे रही। सुजीत कलकल ने वहाँ पे गोल्ड जीता, विकास कालीरमन ने ब्रॉन्ज जीता और उनके साथ ही बहुत सारे इंडियन रेसलर्स को वहाँ पे फॉरेन एक्सपोजर मिला और प्लेयर्स के साथ कॉम्पीट करने का मौका मिला और बहुत कुछ सीखने को मिला। सेम अगर हम देखें तो ग्रीको रोमन की जो टीम है उसके अंदर भी काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, आप सुमित मलिक को देख सकते हैं, सुनील कुमार को देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं। उनके साथ भी कोच गोगी जो हैं वो लगे हुए हैं उनकी ट्रेनिंग कराने के लिए, तो बहुत ही अच्छा एक्सपोजर, बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग, बहुत ही अच्छी प्रिपरेशंस जो हैं वो रेसलर्स की चल रही हैं।
0: अभिषेक, एशियन गेम्स में हमारा 15 सदस्यीय कुश्ती दल भाग लेने जा रहा है, इसमें पुरुष फ्री स्टाइल में अमन सहरावत 57 किलोग्राम, सुजीत कलकल 65 किलोग्राम, सागर जगलान 74 किलोग्राम, दीपक पूनिया 97 किलोग्राम, रजत रूहल 125 किलोग्राम,

0: वर्ग में शामिल हैं। वहीं महिला फ्रीस्टाइल में दीपांशी 50 किलोग्राम, अंतिम पंगाल 53 किलोग्राम, मनीषा भानवाला 57 किलोग्राम, मानसी अहलावत 62 किलोग्राम, निशा दहिया 68 किलोग्राम, प्रिया मलिक 76 किलोग्राम भार वर्ग में शिरकत करेंगी। ग्रीको रोमन शैली में सुमित दलाल 60 किलोग्राम, अमन बरोनिया 77 किलोग्राम, सुनील कुमार 87 किलोग्राम और नितेश सिवाज 97 किलोग्राम भार वर्ग में देश की चुनौती रखेंगे। लेकिन इतने पहलवानों की मौजूदगी में महिला दल की ज्यादा तगड़ी दावेदारी मानी जा रही है, इससे आप कितने सहमत हैं और वजह क्या है?
1: बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारी वुमेन्स टीम कंसिस्टेंटली इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा परफॉर्म करते आ रही है और एक नया ब्रीड भी ऊपर आ रहा है। जैसे दीपांशी फोगाट 50 केजी में है, 17 साल की है, उन्होंने ट्रायल्स में सबको सीजन्ड प्लेयर्स को हरा के एशियन गेम्स में अपनी दावेदारी पेश की है। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि हमारा नेक्स्ट लेवल, क्योंकि हमें एले ओलंपिक्स भी देखना है, तो किस तरह से यंग ब्रीड हमारी परफॉर्मेंस कर रही है। तो अंतिम पंगाल तो है ही, निशा दहिया है, सीजन्ड प्लेयर है, उनसे उम्मीद रहेगी। पर हमें ये भी देखना है कि ये जो नए खिलाड़ी आ रहे हैं, चाहे वो दीपांशी हो, मानसी अलावत हो, एज ग्रुप टूर्नामेंट्स में इंटरनेशनल लेवल पे ये जीत के आ रहे हैं, तो एशियन गेम्स में इनको एक पास एक बहुत बड़ा मौका है कि अपने आप को जो है किस लेवल पे ये देखती है और आगे कैसे इस परफॉर्मेंस को लेके जाती है। मेंस खिलाड़ियों में मैं अमन शेरावत की बात स्पेशली करना चाहता हूँ, क्योंकि उनका जिस तरह से परफॉर्मेंस रहा है पेरिस ओलंपिक्स में, जब रेसलिंग एक बुरे दौर से गुजर रहा था, कैंप नहीं हो रही थी, फिर भी वो मेडल लेके आए हमारे लिए और उसके बाद से वो कंसिस्टेंटली कर रहे हैं। तो अमन शेरावत के पास एक्सपीरियंस है, 57 केजी लोअर वेट कैटेगरीज में हमेशा फ्रीस्टाइल में हम लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, तो उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं। और सुजीत कलकल 65 केजी एक ऐसे कैटेगरी में है जो कि बजरंग पुनिया का कैटेगरी कहा जाता है, और बजरंग पुनिया के बाद अगर ऐसा कोई रेसलर आया है जो इतना अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, वो सुजीत कलकल है, तो उनके लिए बहुत बड़ा मौका मैं मानता हूँ एशियन गेम्स में कि किस तरह से वो यहाँ पे परफॉर्म करते हैं।
0: एशियन गेम्स में कुश्ती में कंपटीशन का लेवल काफी तगड़ा होता है, और सारिका आमतौर पर किन देशों की कठिन चुनौती होगी और उनके खिलाफ हमारी क्या रणनीति होगी?
2: बिल्कुल, एशिया को जो है वो कुश्ती का हब माना जाता है। एशिया में सबसे ज़्यादा कंपटीशन आपको कुश्ती में देखने को मिलता है। एशियन नेशंस हैं जैसे जापान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, चाइना और इंडिया, ये बहुत ही तगड़े माने जाते हैं कुश्ती में, बहुत स्ट्रॉन्ग नेशंस हैं। इनकी जो टीम होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। आप मंगोलिया को भी ले सकते हैं, ये सारे देश काफ़ी अच्छी टक्कर देते हैं। बहुत अच्छा कंपटीशन रहेगा जिसमें आप देख सकते हैं 50 किलो में यूई सुसाकी आपको कॉम्पीट करती नजर आएंगी, जो कि कई बार की वर्ल्ड चैम्पियन हैं, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो ऐसे ही हर एक वेट में 57 केजी में आपको देखने को मिलेगा कंपटीशन काफ़ी अच्छा। 68 में भी बहुत अच्छे अच्छे कंटेंडर्स हैं, और 62 में भी मंगोलिया है, जापान है, 76 में किर्गिस्तान है, तो बहुत ही अच्छा कंपटीशन रहेगा। और जो मेडल की दावेदारी है वो इंडियन प्लेयर्स की ऐसे ही रहेगी, क्योंकि इंडिया की टीम मैं मानती हूँ कि अभी इन सब से ऊपर बढ़ के आ रही है। जापान को अगर कोई सबसे ज्यादा टक्कर दे सकता है तो वो अभी इंडिया की टीम है
0: जी। और अभिषेक, कुश्ती से अब शूटिंग की तरफ चलें, तो निशाने लगाने के इस खेल में हमारी सबसे तगड़ी दावेदारी है। प्रतियोगिता की बात करें तो मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में पार्थ राकेश माने, हिमांशु ढिल्लो, रुद्रांश पाटिल, विमेंस 10 मीटर एयर राइफल में इलावेनिल वलारीवान, सोनम उत्तम मस्कर, विदर्सा विनोद, मेन्स 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, नीरज कुमार, रुद्रांश पाटिल, विमेन्स 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन में आशी चौक से विदर्सा के विनोद, तिलोत्तमा सेन, मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में केदारलिंग बी उचा गनवे, गौरव कमलजीत, विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में सुरुचि सिंह, ईशा सिंह, मनु भाकर, मेंस 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में अनिश भानवाला, विमेंस 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल में ईशा सिंह, मनु भाकर, राही सरनोबत, 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम में केदारलिंग बी उचा गनवे, सुरुचि सिंह, मेन्स ट्रैप में किनान चेनाई, अवर रिजवी, शपथ भारद्वाज, विमेंस ट्रैप में नीरू, मनीषा कीर, आशिमा अहलावत, मेंस स्कीट में अनंतजीत सिंह नरूका, भवतेग सिंह गिल, मैराज अहमद खान, और विमेंस स्कीट में पारिनाज धालीवाल, राजा ढिल्लो, महेश्वरी चौहान जैसे 30 शूटर्स विभिन्न वर्गों में शामिल हैं। युवा और अनुभवी खिलाड़ियों से भरे इस दल में किन खास पर नजरें रखनी चाहिए?
1: बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया आपने धर्मेंद्र जी। पहले तो यह बता दो कि शूटिंग एज ए स्पोर्ट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है मल्टी डिसिप्लिनरी इवेंट्स कॉम्पिटिशन्स में, चाहे वो एशियन गेम्स हो, ओलंपिक्स हो। सबसे पहले हम लोग शूटर्स को हमारे देखते हैं कि ये कितने मेडल्स जीतेंगे। तो लास्ट टाइम भी जो हमारा

0: 100 का छलांग हम लोगों ने मेडल टैली में पार किया था, उसमें शूटिंग का बहुत बड़ा एक योगदान था। 22 मेडल्स हम लोग लेके आए थे, उसमें से 7 गोल्ड मेडल है, 9 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल है। उन 7 गोल्ड मेडल्स में आप देखिए तो एथलेटिक्स जो था हमारा सबसे टॉप में था, 28 मेडल्स आए थे, उसके बाद शूटिंग का नंबर है। तो इस बार भी हमें 100 से पार करना है तो शूटिंग टीम को अच्छा करना होगा। और इस बार मुझे ज़्यादा होप्स इसलिए भी है क्योंकि उसके दो कारण हैं। एक कारण ये है कि इस साइकिल में अगर आप देखेंगे तो पिछले एशियन गेम्स के बाद जो पेरिस ओलंपिक्स हुआ उसमें हमने शूटिंग में काफ़ी अच्छा किया। मनु भाकर 2 मेडल लेके आई और स्वप्निल कुसाले 50 मीटर राइफल 3 में मेडल जीता, 3 मेडल्स हमारे आए शूटिंग में। उसके बाद जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ लास्ट ईयर उसमें हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, हमने इंडिविजुअल कैटेगरीज में मेडल्स जीते, ऐश्वर्या प्रताप तोमर, ईशा, एलाविनिल। तो ये सारे जाएंगे इस एशियन गेम्स में कैरिंग लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि हम लोगों ने वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल जैसे प्लेटफॉर्म में इंडिविजुअल में मेडल जीता है। ये उम्मीद है हमें कि पिछले बार जितना 22 मेडल्स था उससे हम लोग ज्यादा जीतेंगे इस बार।
1: अगर हांगझो एशियन गेम्स 2023 में हमारे शूटर्स ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए पदक जीते नहीं थे बल्कि कह सकते हैं कि बटोरे थे, 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज समेत कुल 22 पदक जैसी आपने बात की भारत की झोली में आए थे। अभिषेक, इस बार पदकों की संख्या से आगे निकलना हमारे निशानाबाजों के लिए खुद कितनी बड़ी चुनौती होगी?
0: चुनौती तो है क्योंकि शूटिंग एशियन लेवल पे एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें बहुत स्ट्रांग कंटेंडर्स है। पिस्टल में साउथ कोरिया बहुत स्ट्रांग है, चाइनीज शूटर्स है, तो बहुत बड़ा कंपटीशन होने वाला है। बट हमारे शूटर्स कुछ कम नहीं है, हम लोगों ने प्रूव किया है। देखना यह है कि इंडिविजुअल कैटेगरी में हम लोग कितने मेडल्स इस बार जीतते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जितने मेडल्स जीते थे वो ज़्यादा मेडल्स टीम कैटेगरी में आए थे, तो टीम कैटेगरी ओलंपिक्स में नहीं है। इस बार हमारे शूटर्स का ये टारगेट है कि इंडिविजुअल कॉम्पिटिशन्स में हम लोग ज़्यादा मेडल लाए ताकि उस तरह से हमारा आगे वर्ल्ड चैंपियनशिप का ओलंपिक्स से क्वालिफिकेशन हो और फिर एले ओलंपिक्स का तक का टारगेट कर सके। तो यहाँ से हमारी जो है शुरू होती है एले ओलंपिक्स की प्रिपरेशन शूटर्स की। और बहुत सारे शूटर्स हैं जिनको पहला बार ही अपॉर्चुनिटी मिल रहा है खेलने के लिए, एक्चुअली मिक्स्ड है, नए प्लेयर्स काफ़ी आए हैं और पुराने प्लेयर्स भी है, तो उम्मीद है काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहेगा।
1: और सारिका, आप खुद युवा और देश की उभरती हुई पहलवान है और चोट की समस्या का सामना किया है, आपसे ये जानना चाहूंगा कि स्ट्रेंथ स्टेमिना के इस गेम कुश्ती में पहलवानों के लिए फिटनेस बनाए रखना कितना जरूरी होता है?
2: कुश्ती में फिटनेस बनाए रखना बहुत जरूरी होता है, ना सिर्फ कुश्ती में बल्कि हर एक स्पोर्ट्स में। मोस्टली अगर हम बात करें तो कॉम्बैट स्पोर्ट्स की, जैसे बॉक्सिंग हो गया, रेसलिंग हो गया, टाई कमांडो हो गया, जूडो हो गया, तो इनमें फिटनेस लेवल का बहुत आपको फर्क देखने को मिलेगा। फिटनेस बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए आपको, इसमें पावर भी चाहिए, एंड्योरेंस भी चाहिए, स्ट्रेंथ भी चाहिए, स्टेमिना भी चाहिए। आपको बाउट लड़नी है कंटिन्यू, आपकी पूरी बॉडी की पावर लग रही है, आपको सांस भी चढ़ेंगे, आपका दम भी फटेगा, उसके लिए आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और एक बहुत ही अच्छा फिटनेस लेवल आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। अभी अगर हम रेसलर्स की बात करें तो रेसलिंग में हमारे जो कोचेस हैं और साथ में हमारे स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के कोच भी हम फेडरेशन ने दिया हुआ है, तो उनके साथ हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनका प्रॉपर हमारे पर ध्यान है कि हमारी फिटनेस लेवल है वो बनी रहे, डाइटिशियन हमारे साथ हैं, हमारी डाइट का प्रॉपर ध्यान रखा जा रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिटनेस बनाए रखना, अगर आपकी फिटनेस अच्छी है तो आपको इंजरीज के चांसेस भी कम होंगे।
1: अभिषेक, भारत की तीरंदाजी टीम की बात करें तो पुरुष रिकर्व टीम में धीरज बोम्बदेवरा, नीरज चौहान, यशदीप भोगे, महिला रिकर्व टीम में कीर्ति शर्मा, कुमकुम मोहोद, अंकिता भगत शामिल हैं। वहीं पुरुष कंपाउंड टीम में साहिल जाधव, कुशल दलाल, गणेश मणि रत्नम तिरुमुरु और महिला कंपाउंड टीम में ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता तनिपर्थी, प्रतिका प्रदीप का नाम शामिल है। कुछ दिन पहले धीरज बोम्बदेवरा ने तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। वो इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष रिकर्व तीरंदाज बने। धीरज की इस कामयाबी से भारतीय कैंप का जोश कितना हाई होगा?
0: बहुत ज्यादा हाई होगा, क्योंकि जब एक आपका खिलाड़ी वर्ल्ड कप फाइनल जैसे प्लेटफॉर्म से जीत के आता है जिसमें सिर्फ टॉप 8 शूटर्स आर्चर्स खेलते हैं और वो आपके साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, तो एक मोटिवेशन आ जाता है कि एक हमारा आर्चर जाके इतने बड़े लेवल पे जीता है। और वहाँ से डायरेक्टली धीरज मेक्सिको से जापान पहुँच चुका है और ट्रेनिंग कर रहा है और एक्सपीरियंस काफ़ी है, पेरिस ओलंपिक्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था धीरज का, तो धीरज से उम्मीद है कि वो टीम को आगे लेके चलेगा, क्योंकि इस बार का जो टीम है आर्चरी का वो काफ़ी नया टीम है। 3 प्लेयर ही जो है लास्ट एशियन गेम्स से इस बार खेल रहे हैं, उसमें से धीरज है, ज्योति सुरेखा है कंपाउंड वुमेन में, अंकिता भगत है, बाकी सारे नए आर्चर्स हैं। और लास्ट टाइम का जो

0: आर्चरी का हमारा परफॉर्मेंस था वो काफी अच्छा था, 9 मेडल्स हमारे आए थे, हम लोगों ने कंपाउंड में स्वीप कर गए थे हम लोग। इस बार इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आर्चरी में LA क्वालिफिकेशन भी इस यहाँ से होगा, तो वो हमारी कोशिश रहेगी कि हम यहाँ से बर्थ निकाल सके ओलंपिक्स का भी।
1: जी, और निशाने साधने के पारंपरिक खेल तीरंदाजी में पिछले एशियन गेम्स में भारत के धनुर्धरों ने 5 स्वर्ण समेत 9 पदक जीते थे। टीम कॉम्बिनेशन को देखते हुए क्या लगता है इस बार हम उससे आगे निकलेंगे?
0: हमें आगे निकलना चाहिए क्योंकि एक्सपीरियंस खिलाड़ी भी है और कुछ नए भी है। ज्योति सुरेखा की अगर बात करें तो बहुत उनका एक्सपीरियंस है, उनके साथ हम लोगों ने ज्योति और ओजस ने लास्ट टाइम मिक्स्ड फॉर्मेट में कंपाउंड में गोल्ड मेडल जीता था और साउथ कोरिया की टीम को हराया था। इस बार उनके साथ साहिल यादव है जो कि नए प्लेयर है लेकिन वो काफ़ी टैलेंटेड है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में उनका गोल्ड मेडल है और यही वो फॉर्मेट है जहाँ पे हमारा LA ओलंपिक्स का क्वालिफिकेशन है। तो उम्मीद है अगर उस तरह का हम लोग परफॉर्मेंस करें तो हमें LA ओलंपिक्स का कोटा भी मिल जाए। तो काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है जो हमारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स है आर्चरी के, क्योंकि 2-3 है, कि वो पूरा टीम को साथ में आगे लेके चले।
1: और सारिका, खेलों के विकास के लिए नए भारत में जिस तरह से खेल मंत्रालय, साई और तमाम खेल संघ काम कर रहे हैं उससे खिलाड़ियों के लिए कितना माहौल बेहतर हुआ है?
2: खिलाड़ियों के लिए माहौल काफ़ी बेहतर हुआ है, काफ़ी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं एंड स्कीम्स वगैरह बहुत अच्छी अच्छी निकाली गई हैं। जैसे अगर हम खेलो इंडिया स्कीम की बात करें तो उससे बच्चों को बेनिफिट मिल रहा है, टॉप स्कीम है उससे बेनिफिट मिल रहा है, ना सिर्फ गवर्नमेंट बट प्राइवेट स्पॉन्सर्स भी आ रहे हैं, तो काफ़ी सारे स्पॉन्सर्स आ रहे हैं, बच्चों को जो है, स्पोर्ट्स पर्सन्स को जो है वो बहुत फ़ायदा मिल रहा है एंड जो कैंप वगैरह लग रहे हैं हमारे तो उससे बहुत बेनिफिट हो रहा है। हर तरह से रिकवरी, ट्रेनिंग, डाइट, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है और गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छे से हमें काम आ रही हैं।
1: और अभिषेक, बॉक्सिंग का जब भी नाम आता है तो पदकों की हमारी आस बढ़ जाती है। इस बार बॉक्सिंग दल में पुरुष वर्ग में जादूमणि सिंह 55 किलोग्राम, सचिन सिवाच 60 किलोग्राम, सुमित कुंडू 70 किलोग्राम, अंकुश 80 किलोग्राम, कपिल पोखरिया 90 किलोग्राम, नरेंद्र बेरवाल 90 से अधिक किलोग्राम भार वर्ग में भारत की चुनौती पेश करेंगे। महिला वर्ग में साक्षी चौधरी 51 किलोग्राम, प्रीति पवार 54 किलोग्राम, प्रिया गंगास 60 किलोग्राम, परवीन हुडा 65 किलोग्राम और लवलीना बोरगोहेन 75 किलोग्राम वर्ग में देश की झंडा बरदार होंगी। इन नामों को सुनकर बेहद दमदार दावा नजर आ रहा है, आप क्या मानते हैं?
0: बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है कि इन बॉक्सिंग टीम की हमारी परफॉर्मेंस कॉमनवेल्थ गेम्स में काफ़ी अच्छी रही है, खास करके महिला टीम की जो 5 गोल्ड मेडल वहाँ पे जीता। लेकिन एशियन गेम्स बिल्कुल ही डिफरेंट चैलेंज होगा, एशियन गेम्स में कंपटीशन और भी ज़्यादा होने वाला है। अब पर हमारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स है जैसे लवलीना बोरगोहेन ओलंपिक मेडलिस्ट है, 75 किलो कैटेगरी में खेल रही है, लास्ट टाइम उन्होंने इसी कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता था, तो उनसे उम्मीद काफ़ी होगी। प्रीति पवार का मैं नाम लेना चाहूँगा, 54 kg में वो काफ़ी कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रही है, एशियन चैम्पियनशिप में अभी वो गोल्ड मेडल जीती है इस साल, तो ये सारा परफॉर्मेंसेस वहाँ पे जाके एशियन गेम्स में एक और बड़े मंच में देना, ये हमारी तैयारी दिखाएगी कि हम लोग कितना परफॉर्म कर सकते हैं वहाँ पे। वैसे ही प्रिया घनगा से, ये नए टैलेंट है लेकिन इन्होंने भी एशियन चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, तो हमारी महिला टीम काफ़ी अच्छा करते हुए एशियन गेम्स तक अभी तक कर रही है, उम्मीद है इनसे काफ़ी अच्छा उम्मीद रहेगा। मेंस टीम नई टीम है, थोड़ी इनएक्सपीरियंस्ड है, पर जादूमणि सिंह है अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सचिन सिवाच एक्सपीरियंस्ड है उनके पास अगेन, और नरेंद्र बेरवाल लास्ट टाइम इन्होंने मेडल जीता था। उम्मीद हमारी रहेगी कि हालांकि कॉम्पिटिशन बहुत तगड़ा होने वाला है बॉक्सिंग में, कि वो लास्ट टाइम का जो हमारा आंकड़ा था 4 मेडल का उससे आगे जा सके।
1: हांगझो में मुक्केबाजी में हमने लवलीना बोरगोहेन के 1 रजत समेत 5 पदक जीते थे, इनमें से 4 मेडल महिला मुक्केबाजों के नाम थे। अभिषेक, वैसे तो दोनों वर्गों में पंच के 1 से 1 उस्ताद नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या मेरी तरह आपको भी लग रहा है कि महिला वर्ग में पदकों की हमारी ज्यादा तगड़ी और दमदार चुनौती है?
0: बिल्कुल, इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, वर्ल्ड कप्स जितने हो, उसमें हमारी जो वुमेन बॉक्सर्स हैं उनका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा आ रहा है और बहुत कंसिस्टेंटली से ये परफॉर्मेंस आ रहा है। सारे टॉप बॉक्सर्स को आप अगर देखें, चाहे वो चाइना की हो, कजाकिस्तान हो, उज़्बेकिस्तान हो, इनको हरा रहे हैं हम लोग। प्रीति पवार ने भी इनको हराया है एशियन चैंपियनशिप का जब गोल्ड मेडल जीता हो, जब एशियन टाइटल जीत के अगर जब एशियन गेम्स में जाते हो तो कॉन्फिडेंस ही कुछ अलग होता है कि मैं ये इस लेवल पे जीत चुकी हूँ तो यहाँ पे भी वही कर सकते हैं, तो वो कॉन्फिडेंस रहेगा इनका कि एशियन चैंपियनशिप में हमारी टीम, महिला टीम ने काफी अच्छा किया है और एशियन गेम्स में जाके हमें रिपीट करना है वो परफॉर्मेंस।
1: सारिका।

0: एशियन गेम्स से ठीक पहले भारतीय कुश्ती दल को तगड़ा झटका लगा। तीन भारतीय पुरुष पहलवान डोपिंग के चलते एशियन गेम्स में उतरने से पहले ही बाहर हो गए। इसका कितना मनोवैज्ञानिक असर बाकी के पहलवानों पर पड़ सकता है?
1: इसका काफी असर पड़ेगा रेसलिंग पे, खास करके प्लेयर्स पे। जैसे एक बहुत अच्छी टीम हमारी तैयार हो गई थी और जो भी प्लेयर्स हमारे डोपिंग में फंसे हैं उनसे पूरी दावेदारी थी मेडल की। आप मुकुल दहिया को लगा सकते हैं, एशियन चैंपियनशिप के सिल्वर मेडलिस्ट हैं और उनको एक बहुत स्ट्रांग कंटेंडर हम मान सकते थे 86 केजी में। पूरे भारत को उनसे उम्मीदें थी। दीपांशु 130 किलोग्राम भार वर्ग में जो कि खेलने वाले थे ग्रीको रोमन में, उन पर भी डोपिंग का बैन है। और दीपक ग्रीको रोमन के ही पहलवान हैं, उन पे भी बैन लगा है। तो एक बहुत बड़ा झटका भारतीय कुश्ती के लिए ये है। तो अभी उनका नाम तो रिप्लेस नहीं हो सकता क्योंकि टाइमलाइन जो होती है एशियन गेम्स में जाने की, एंट्रीज भेजने की, वो बंद हो चुकी है। लेकिन जो हमारी टीम अभी बाकी बची है, हमें उनसे पूरी उम्मीदें हैं कि वो इन सारे मेडल्स को कवर करें।
0: जी, और अभिषेक, अब बात स्क्वाश की, टीम की बात करें तो एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय टीम में सूरज कुमार चंद पुरुष टीम और मिक्स डबल्स, वीर चोटरानी मेंस सिंगल्स और मेंस टीम, वेलावन सेंथिल कुमार मिक्स डबल्स मेंस टीम, अभय सिंह मेंस सिंगल्स और मेंस टीम में शामिल है। महिला वर्ग में युवा अनाहत सिंह, जोशना चिनप्पा के अनुभव के साथ साथ तन्वी खन्ना और शमीना रियाज की भी चुनौती होगी। इस गेम में हमारे खिलाड़ियों ने एशिया में अपनी दमदार चुनौती पेश की है, तो अनुभव और युवा जोश वाली ये टीम कितना कमाल कर सकती है?
2: बहुत कमाल कर सकती है। और मैं इसलिए भी ये बोल रहा हूँ क्योंकि अगर अनाहत को देखें तो उनका काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। इस साल वर्ल्ड जूनियर टाइटल जीती है अनाहत और उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं। और लाइक आर्चरी, स्क्वाश भी एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें एले ओलंपिक्स क्वालिफिकेशन स्पॉट भी होगा, तो वो उसके लिए भी हम लोग फाइट करेंगे। हमारी मेन्स टीम लास्ट टाइम गोल्ड जीती थी और वही टीम इस बार भी उतरी है, तो वो एक्सपीरियंस भी है, तो उनसे भी हमें काफ़ी उम्मीद रहेगी कि वो फिर से गोल्ड लेके आए। तो ओवरऑल स्क्वाश में मुझे लगता है परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहेगा। जोशना चिनप्पा जो कि बहुत ही एक सीजन प्लेयर है और इस लेवल पे काफ़ी मेडल्स हमें दे चुकी है, वो भी मिक्स टीम में है, तो उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा स्क्वाश से भी।
0: 2023 की बात करें तो भारत ने स्क्वाश में 2 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते थे। उस टीम के कई खिलाड़ी इस बार शामिल नहीं हैं। दूसरी तरफ अनाहत सिंह जैसी युवा प्रतिभा की अगुवाई में क्या भारत अपने मेडल्स के पिछले आंकड़े को पार करता दिखाई दे रहा है?
2: कंपटीशन काफी टफ है स्क्वाश में, मलेशिया होगा, बाकी टीमें और भी होंगी, तो ये देखना पड़ेगा कितना हम लोग चैलेंज कर सकते हैं टॉप कॉम्पिटिटर्स को। बट इस लेवल पे जब आप खेलते हैं तो आपके अंदर एक मोटिवेशन अलग होता है कि आप टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एशियन गेम्स में, तो आपको परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा हो जाता है। तो ये देखते हुए मुझे लगता है काफ़ी अच्छा टीम परफॉर्म करेगी और अनाहत के ऊपर तो काफ़ी फोकस रहेगा कि वो कैसा करती है। अगर वो एक सिंगल्स यहाँ से बर्थ निकाल सकती है ओलंपिक्स के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए।
0: सारिका, दबाव की परिस्थितियों में एक पहलवान के लिए अपने जज्बातों पर काबू बनाए रखना कितना जरूरी होता है, और जब आप मुकाबले में पिछड़ रही हो तब स्टैंड में लहराता एक तिरंगा और समर्थकों का एक जोश, जो आवाज उठती है स्टैंड से, वो आपके अंदर कितनी स्फूर्ति भरती है?
1: खिलाड़ियों के लिए दबाव की स्थिति में अपने माइंड को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। काफ़ी सारे प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो दबाव में आके पिछड़ रहे हैं तो कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं कि मैं तो हार रहा हूँ। लेकिन तब आपको पीछे से शोर सुनाई देता है, चीयर सुनाई देता है, इंडिया इंडिया, तो वो आपके अंदर एक जोश लाता है कि नहीं, मुझे करना है, ना सिर्फ अपने लिए, अपने देश के लिए करना है। और तब आप वो इंडिया का कॉस्ट्यूम पहनकर मैट पे जाते हो या अपने रिंग में जाते हो। हर स्पोर्ट्स के इस पर्सन की फीलिंग सेम होती है, तो वो अपने लिए नहीं कॉम्पीट करता, वो अपने देश के लिए कॉम्पीट करता है। उसको ये होता है कि मेडल मेरा नहीं है, मेरा देश का है और मुझे अपने देश के लिए मेडल लाना है। तो प्लेयर्स में सबसे ज़्यादा मैं ये मानती हूँ कि जो अपने माइंड को कंट्रोल करता है, जो अपना माइंड सेट स्ट्रांग रखता है, वो हर एक सिचुएशन को टैकल कर सकता है, हर एक सिचुएशन में जीत सकता है। और रेसलिंग स्पोर्ट्स की मैं बात करूँ स्पेसिफिकली, तो हमारे में ऐसा होता है कि लास्ट के 10 सेकंड में भी आप अगर स्कोर ले रहे हो तो आप जीत सकते हो। आपके पास ऑप्शन बचा होता है कि आप अटैक करके स्कोर ले सकते हो। और तब आपको पीछे से चीयर सुनाई देता है तो बहुत आपका मनोबल बढ़ाता है, बहुत आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है कि मेरे साथ इतने लोग खड़े हैं, मैं अकेला नहीं हूँ।
0: जी, और आपने एशियन गेम्स में भारतीय कुश्ती दल की तो तमाम बातें कर ली, अब आपने भी देश के लिए कई प्रतिस्पर्धाओं में मेडल जीत

0: तिरंगे का मान बढ़ाया है, आपने आगे अपने करियर के लिए क्या लक्ष्य तय कर रखा है?
1: हर खिलाड़ी की तरह मेरा भी यही सपना है कि ओलंपिक्स में जाना है, देश को रिप्रेजेंट करना है और देश के लिए मेडल लेकर आना है। तो मेन फोकस तो LA ओलंपिक्स का ही रहेगा। मैं भी यही चाहूँगी कि मैं LA ओलंपिक्स में जाऊँ और अपने देश का मान सम्मान बढ़ाऊँ, गौरव बढ़ाऊँ और वहाँ से मेडल लेकर आऊँ।
0: और अभिषेक, चलते चलते एक सवाल कि क्या भारतीय दल आपको पदकों के मामले में पिछली बार से आगे निकलता दिखाई दे रहा है?
2: बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि जिस तरह से हमारी प्रिपरेशन हुई है, आई थिंक काफ़ी सब कुछ हम लोगों ने कवर किया है। हम लोगों ने यहाँ तक कवर किया कि जिस तरह वहाँ पे हमें एकोमोडेशन मिलेगा क्रूज शिप में, कंटेनर्स में, हम लोगों ने हमारे साई सेंटर्स में, पटियाला में, बेंगलोर में एथलीट्स को उसी तरह का एकोमोडेशन दिया ताकि वो एकोमोडाइज कर जाए। बाहर हम लोग एथलीट्स को काफ़ी भेजा गया है इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए, जैसे कि सारिका ने बताया, फॉरेन कोचेस काफ़ी आए हैं, तो एक कंप्लीट प्रिपरेशन हुआ है। तो ऐसा जब प्रिपरेशन होता है तो एथलीट के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि ये प्रिपरेशन तैयारी हम लोग करके जा रहे हैं तो कुछ हम लोगों ने छोड़ा नहीं है, अब सिर्फ वहाँ पे स्टेज में जाके हमें परफॉर्म करना है, मेडल जीतना है।
0: साथियों, एशियन गेम्स का मंच तैयार है, हमारे खिलाड़ी भी हर चुनौती को तोड़कर पोडियम तक पहुँचने की जोरदार तैयारी में है। उम्मीद है कि आईची नागोया में होंगझोंग में जीते पदकों का न सिर्फ आंकड़ा बढ़ेगा बल्कि मेडल का रंग भी और सुनहरा होगा। सारिका मलिक, आपको उज्जवल भविष्य की दुआ के साथ साथ स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद।
1: थैंक यू सर।
0: और अभिषेक रॉय, आकाशवाणी को समय देने के लिए आपका भी धन्यवाद।
2: थैंक यू।
0: फिलहाल चीयर फॉर भारत कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शहनवाज खान के साथ धर्मेंद्र मणि राजेश को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।

8:36 मिनट आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छालो पूनम के संग ओनली ऑन 107 दिल से दिल तक। फिलहाल एक जरूरी सूचना। 138वीं डाक अदालत एवं पेंशन अदालत मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल पश्चिम बंगाल सर्किल के अध्यक्षता में दिनांक 28 अक्टूबर 2026 को अपराह्न 12:30 बजे मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्किल योगायोग भवन P36 CR एवेन्यू कोलकाता 700012 में गूगल मीट के माध्यम से 138वीं डाक अदालत एवं पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी। इस अदालत में पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के डाकघरों से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन भोगियों की डाक सेवाओं और पेंशन दावे से संबंधित शिकायतों का निपटान किया जाएगा। शिकायत पत्र में संदर्भ संख्या, विभिन्न डाक प्राधिकारियों से पूर्व में प्राप्त पत्रों की तारीख एवं शिकायतकर्ता के मोबाइल नंबर सहित पूर्ण ब्योरों का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। शिकायत श्री एस सी दास, सहायक निदेशक डाक सेवा, ग्राहक संतुष्टि, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्किल P36 CR एवेन्यू कोलकाता 700012 के नाम से भेजी जाए और ये डाक या ईमेल आईडी cpmg_wb@indiapost.gov.in या

adpgcowp@gmail.com या pg.wb@indiapost.gov.in के माध्यम से दिनांक 30 सितंबर 2026 तक या उसके पहले पहुंच जानी चाहिए। शिकायतकर्ता से अनुरोध है कि निर्धारित तारीख एवं समय पर गूगल मीट के जरिए डाक अदालत एवं पेंशन अदालत में उपस्थित हों। किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए सहायक निदेशक डाक सेवा ग्राहक संतुष्टि से दूरभाष संख्या 03322120250 अथवा 22120612 अथवा 22120500 पर संपर्क किया जा सकता है। डाक अदालत अथवा पेंशन अदालत के आवेदनों अथवा ईमेल पर डाक अदालत अथवा पेंशन अदालत शब्द लिखा होना चाहिए। डाक एवं पेंशन अदालत में उत्तराधिकार आदि से संबंधित विधिक मामलों एवं नीतिगत मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। सूचना समाप्त हुई। फिलहाल 8:39

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।

8:50। मिथुन अरिजीत सिंह और सुनिधि चौहान की खूबसूरत आवाज में फिल्म शिवाय से आपने खूबसूरत सा नगमा सुना। अगला नगमा बेहद खूबसूरत, जब तक आप सब तक पहुंचाऊंगी नहीं तब तक उसकी खूबसूरती को मैं शब्दों में तो बयां नहीं ही कर पाऊंगी। सुनते रहिए, साथ रहिए।

8:57 और अब पूनम के जाने का समय है एक कदम करीब। तो आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन अस्त व्यस्त बिल्कुल मत रहिए। इस आशा के साथ पूनम लेती है विदाई। टाटा बाय बाय।

हमें डर है कहीं हम खो ना जाए। तो खोना तो जायज है, कारण सलिल चौधुरीर म्यूजिक जार स्पेशलिटी वेस्टर्न क्लासिकल सिम्फनिस संगे एई मिशेल इंडियन फोक किंबा क्लासिकल म्यूजिकर संगे। तारपरे जे म्यूजिकल सफरटा शुरू है सेटा सुहाना होते तो बाध्य। चले आसि किशोर कुमार एवं लता मंगेशकर द्वैत कण्ठे गावा एई गानटाते शर्मिली छवि थेके।